0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
2: हेलो हाय वेलकम नमस्ते रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जी हाँ, शुरू हो चुका है वो समय जो कि हम अपना फेवरेट समय बुलाते हैं, थर्सडे वाला दिन, यानी कि ऑफ कोर्स ये है मस्ती 90 मिक्स टेप वाला टाइम। और अगर जस्ट इन केस आप ऑन कोर्स सुन रहे हैं तो मतलब शनिवार जो है वो हो चुका है। लेकिन फिलहाल के लिए भाई, ये जो हमारा 90s का मौसम है उसको थोड़ा सा ऐसा मनाते हैं कि थोड़ा बादल गरजेंगे, थोड़े 90s वाले गाने बरसेंगे और उसी के साथ साथ हमारी यादों की जो अलमारी है वो इस तरह से खुल जाएगी, है ना। आपको अपने बचपन के घर की आवाज याद है? मैं घर नहीं पूछ रही, उसकी आवाज पूछ रही हूँ। प्रेशर कुकर की सीटी, डोरबेल का साउंड, लैंडलाइन की ट्रिंग ट्रिंग, टीवी के ऑन होने का वो हल्का सा एक हम सा आता था ना, वो बाहर बच्चों के जो है आंगन में या फिर गली में बैट बॉल खेलने की आवाज। नोटिस किया, 90s की यादें अक्सर विजुअल्स से पहले साउंड्स बनके जो है याद आती हैं, क्योंकि उस वक्त हम हर चीज ऑब्जर्व बहुत करते थे, हम बिजी कम थे, प्रेजेंट ज्यादा थे। बॉलीवुड भी कुछ ऐसा ही था, एक गाना सिर्फ याद नहीं हुआ करता था, उसमें कॉस्ट्यूम्स नोटिस होते थे, लोकेशंस देखी जाती थी, बैकग्राउंड डांसर्स को भी कुछ कुछ हम नोटिस करते थे, और कभी कभी तो हीरो के जूते भी हम नोटिस करते थे। हम मूवीज देखते नहीं थे 90s में, सिर्फ उनमें घुस जाया करते थे। इसीलिए 90s इतना हमें स्पेशल लगता है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वो परफेक्ट नहीं था लेकिन वो कंप्लीट था, फुल कलर्स के साथ, फुल इमोशंस, फुल एक्साइटमेंट एंड पूरे दिल के साथ। तो फिर आज जो है बिल्कुल फिर से खोलते हैं हमारा यादों का वो ओल्ड स्कूल एल्बम, जिसमें कुछ फोटोज धुंधले हैं पर फीलिंग्स क्रिस्टल क्लियर। शुरू करें, चलिए करते हैं। और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: Are you ready?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

रेगिस्तान रे रेत रे हो रे मारी।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
1: एक तो इस टॉफी का नाम मतलब लेने में ही ऐसा लगता था कि इतना मतलब टंग ट्विस्टर देने का तो हमें ऐसा कोई मतलब हुआ ही नहीं था ना, ऐसा करना नहीं चाहिए था ना सर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आज आपके साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स डे। भाई 90s में व्हेन वी टॉक अबाउट सो मेनी कैंडीज एंड टॉफीज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कंपट वम्पट तो हम मतलब बहुत ही हम वैसा स्टैंडर्ड से हो गए, बट एक ये टॉफी आई थी जिसका नाम ही कुछ ऐसा था कि हमें ऐसा लगता था कि इसका नाम अगर हमने सही प्रोनाउंस कर दिया तो हम भी फॉरेन रिटर्न कहलाए जाने चाहिए, हमें ऐसा वाला हक वाली फीलिंग आ गई थी। एल्पेनलीबे, जी हाँ वही नाम था। सो वेल 90s के बच्चों में ना एक क्वालिटी कॉमन थी कि हम साइंटिस्ट तो थे नहीं थे लेकिन एक्सपेरिमेंट बहुत किया करते थे और हमारा लैब होता था हमारा घर, इक्विपमेंट्स तो जो भी मिल जाए ठीक है, और रिसर्च का सब्जेक्ट ये कैंडी। एल्पेनलीबे के साथ ओके पता नहीं आपने किया है नहीं किया है, इट्स अ वेरी इट यूज टू बी अ वेरी कॉमन थिंग टू डू बिकॉज स्कूल में जाके ये सारी डिस्कशन जो है जरूर की जाती थी। तो वो क्रीमी कैरमल वाली कैंडी हमारी जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी, और फिर किसी एक जीनियस दोस्त ने एक दिन आइडिया दिया कि अगर इसको हल्का सा जो है गर्म करे तो बस एक नया साइंस का एक्सपेरिमेंट मिल गया हमें, तो कोई कैंडी हो हाथ में जो उसको रब कर रहा है, कोई धूप में रख रहा है, कोई बल्ब के पास रख रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है सॉफ्ट हो जाएगी शायद। रिजल्ट कभी वो आधी मेल्ट होती थी, रैपर में जाके चिपक जाती थी, कैंडी का शेप ही खराब हो जाता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट बंद होने का नाम ही नहीं लेता था क्योंकि 90s के बच्चों को गूगल तो आंसर्स देता था नहीं, क्यूरियोसिटी आंसर्स देती थी। ऑनेस्टली हम हर चीज़ के साथ ऐसे ही थे, पेन खोल के देखना कि अंदर क्या है, रिमोट के बटन्स निकाल के देखना कि इसमें ओहो ऐसा दिखता है, टॉर्च की बैटरी या फिर इमरजेंसी लाइट को टोक पीट के इधर से ओ इधर यहाँ पे ऐसे होता है, लॉजिक सिंपल था ट्राई करके देखते हैं। और एल्पेनलीबे वैसे भी इतनी स्पेशल कैंडी थी, उसे एक तो जल्दी खाया नहीं जाता था, उसे इंजॉय किया जाता था, लाइक उसको सक ऑन इट राइट कि चलती रहनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन भी चलती थी, एक्सपेरिमेंट्स भी चलते थे। आजकल बड़े सारे मैं ऐसे रील्स वगैरह देखती हूँ लाइफ हैक्स और ये सारी, तब हम खुद ही के खुद लाइफ हैक्स जो है इन्वेंट कर लिया करते थे कि सक्सेसफुल हुए या नहीं वो अलग बात है, बट या इट डेफिनेटली मेड 90s का चाइल्डहुड एब्सोल्युटली मेमोरेबल है ना, ऐसे ही मेमोरेबल 90s वाली बातें करते रहेंगे ऑन मस्ती 90s मिक्सटेप, सो स्टे ट्यून्ड।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ,
3: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Musty Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musty 24/7. Email a brief intro to info@radiomusty.com.sg requesting for an application form.
6: Good morning!
7: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
0: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s में जो है लॉटरी जीतने के लिए करोड़ों रुपए की कोई जरूरत होती नहीं थी वैसे। कभी कभी बस स्कूल बैग के जिप से एक भूला हुआ 5 रुपए का नोट अगर मिल जाए, सच बताऊं उस वक्त जो फीलिंग आती थी वो आज वॉलेट में रखे हुए 50 सिंग डॉलर्स मिलने पर भी नहीं है। 100 ले लो यार, 100 सिंग डॉलर भी ऐसी गलती से मिल जाए तो फिर नहीं आती है। क्या याद था सो ये, वाह वाह। जो स्कूल का नॉर्मल दिन, ठीक है, आप बैग खोल रहे हो, कुछ तो ढूंढ रहे हो, पेंसिल ढूंढ रहे हो या रिपोर्ट कार्ड के नीचे कुछ निकाल रहे हो, एंड अचानक से साइड वाले छोटे से वो जिप के कंपार्टमेंट में जहाँ पे यूजुअली जो है आप इतना ध्यान नहीं देते हो, लेकिन कभी किसी एक अरसे पे आपने नोट फोल्ड करके वहां पे डाला हुआ था, कभी शायद 5 या 10 का, ठीक है, और वो आपको अचानक से मिल गया, उस मोमेंट में लगता था कि भाई मुझसे ज़्यादा अमीर तो कोई है ही नहीं। एंड फनी थिंग, उस पैसे का कोई स्पेसिफिक पर्पस भी नहीं होता था, लेकिन पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड काइंड ऑफ होती थी कि यार 5 रुपए में ऑरेंज आइस कैंडी आ जाएगी, या फिर पैंटम वाली वो है ना पॉपिंस मैंगो बाइट, या फिर स्कूल के कैंटीन का समोसा या पैटीज। मतलब एक नोट और पूरा बिजनेस प्लान हमारा वही का वही रेडी। वो नोट यूजुअली मम्मी ने कब रखा था या फिर हम रख के जो है छुपाया था बेसिकली, लेकिन हम भूल गए कि हाँ ओ ऐसा भी हुआ था। बेसिकली ये जो है इसका मैथ्स इस पाए हुए नोट का अलग ही हुआ करता था। 5 का मतलब वैल्यू, 10 का मतलब सेलिब्रेशन, 20 का मतलब भाई राजा और रानी हो तुम। आजकल के डिजिटल पेमेंट्स के ज़माने में नंबर स्क्रीन पे फ्लैश होते हैं, तब नोट हाथ में फील हुआ करता था, फोल्ड होता था, पॉकेट में रहता था, उसकी प्रेजेंस ही एक्साइटमेंट क्रिएट किया करती थी। और स्कूल बैग्स में भी क्या क्या सीक्रेट्स संभाल के रखते थे ना, पुराने किसी हॉल के टिकट्स, क्रिकेट के स्कोर पेपर्स, कैंडी के रैपर्स, और कभी कभी ये हिडन कैश। इतनी प्यारी लगती है ना ये वाली 90s वाली यादें, उस वक्त ना खुशी की एंट्री के लिए बड़ी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं हुआ करती थी। कभी कभी एक फॉरगॉटन ये 5 रुपए का नोट ही एकदम इतना खुश कर देता था, लगता था कि आज तो मेरा दिन ही बन गया, कुछ तो मैंने किसी जन्म में अच्छा किया होगा कि भगवान तुमने मेरी सुन ली, ऐसे वाले फीलिंग्स आते थे। सिंपल हुआ करते थे यार 90s के वो दिन, अमेजिंग दिन।

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
3: दोस्ती,
4: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे,
5: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
2: पर जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सलूशन है।
6: सम रिलेशनशिप्स आर टेस्टेड, सम आर ट्रांसफॉर्म्ड।
7: मां दुल्हन के लिए मेकअप,
6: शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2, रिलीजिंग आइलैंड वाइड ऑन 19th जून एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर।
8: Let's start!

बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई जहां पर यादों की बात हो रही है, हम 90s के बॉलीवुड को तो इधर छोड़ ही नहीं सकते हैं। भाई 90s के बॉलीवुड डायरेक्टर्स के पास, चलिए वहीं पे जा रही हूं, एक सुपर पावर और थी। बजट लिमिटेड हो सकता था लेकिन स्टाइल कभी लिमिटेड नहीं हो सकता। स्टाइल क्रिएट करने का एक फेवरेट शॉर्टकट था, रिफ्लेक्शंस, याद दिलाओ। हीरो मिरर में दिख रहा है, हीरोइन पानी में दिख रही है, विलेन सनग्लासेस के रिफ्लेक्शन में दिख रहा है। कभी कभी तो एक्चुअल कैरेक्टर से ज्यादा उसका रिफ्लेक्शन स्क्रीन पे होता था और हम उस वक्त ये नहीं सोचते थे कि बस यही लगता था कि यार कितना सही लग रहा है, मतलब जो शॉट कितना सही लग रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है दैट 90s के फिल्म मेकर्स रिफ्लेक्शंस का यूज सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं करते थे, वो एक क्लेवर फिल्म मेकिंग ट्रिक भी थी। मिरर, ग्लास, वाटर या सनग्लासेस का रिफ्लेक्शन से सीन इंस्टेंटली सिनेमैटिक लगता था, विदाउट एक्सपेंसिव विजुअल इफेक्ट्स, विदाउट फैंसी कैमरा का टेक्नोलॉजी, बस एंगल सही होना चाहिए। एंड ऑनेस्टली 90s डायरेक्टर्स एंगल्स के मैजिशियंस हुआ करते थे। एक सिंपल मिरर को भी ड्रामेटिक बना दिया अगर तो मतलब मैजिशियन ही हुए ना, पर्टिकुलरली सस्पेंस सीन में। ठीक है, हीरो रूम में एंटर करता है और पहले रिफ्लेक्शन दिख गया, ऑडियंस इंस्टेंटली अलर्ट मोड पे। या रोमांटिक सॉन्ग्स में फॉर एग्जांपल हीरोइन लेक के पास खड़ी है और पानी में रिफ्लेक्शन शिमर कर रहा है, पूरा सीन ही ड्रीमी बन गया। और सनग्लासेस वाले शॉट्स, उफ उसकी तो क्या ही बात करें। विलेन का रिफ्लेक्शन हीरो के चश्मे में एकदम, हीरो का रिफ्लेक्शन कार के मिरर में, 90s सिनेमा को रिफ्लेक्शन से सच में प्यार था। आजकल CGI डिजिटल इफेक्ट्स, यस इट इज देयर, तब क्रिएटिविटी एंड कैमरा एंगल्स थे। सीरियसली विजुअली मेमोरेबल इसीलिए बने हैं 90s की ये सारी फिल्में क्योंकि टेक्नोलॉजी से ज्यादा इमेजिनेशन पे हमने उस पर भरोसा किया। ऑनेस्टली लाइक सीरियसली अभी मैं ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ तो सीन्स नहीं सामने आते, बड़ा विजुअल माइंड है जी मेरा अब हो गई क्योंकि ये मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: कंसल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: भाई 90s में चप्पलों का यूज सिर्फ हमारी मम्मियां नहीं किया करती थी चप्पलों का यूज जो है वो और भी काफी सारी चीजों के लिए हम बना लिया करते थे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई ये तो कमाल का टैलेंट आपको मानना ही पड़ेगा 90s के बच्चों में कि किसी भी खाली जगह को इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हम बना ही देते थे। नहीं, एक टेनिस की बॉल चाहिए, एक बैट चाहिए, अगर बैट नहीं मिला वो कपड़े धोने वाला पट्टा भी चल जाएगा, थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए, बाकी सब अरेंज हो ही जाता था। सो क्या भाई चप्पल की बात यहाँ पे कहाँ पे आ गई, क्योंकि भाई बाउंड्री भी तो बनानी है ना, है ना। ग्राउंड तो था नहीं और रोप भी नहीं था और माकस तो थे ही नहीं, तो बाउंड्री कैसे बनेगी। सिंपल, सब अपनी अपनी चप्पलें वहां पर रख दो, चप्पलों से बन जाती थी बाउंड्री ऑफिशियल। एक चप्पल या एक चप्पल वहां, बीच का डिस्टेंस रफली डिसाइड कर लो भाई। स्टेडियम का इनॉग्रेशन कंप्लीट एंड द फनी पार्ट इज सबको एग्जैक्टली पता होता था बाउंड्री कहाँ है, कोई मैप है नहीं, कोई मेजरमेंट है नहीं, लेकिन आर्ग्यूमेंट फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि अरे थी बाउंड्री, थी नहीं थी, चप्पल के अंदर बाउंस हुआ था। फिर पूरा थर्ड अंपायर पैनल एक्टिवेट हो जाता था जो एक्चुअली फील्डिंग कर ही नहीं रहा था। सो 90s के क्रिकेट खेलने की, ये गली क्रिकेट खेलने की ब्यूटी ही यही थी, रूल्स रिटन नहीं होते थे, बनाए जाते थे। कभी लेफ्ट साइड का सिक्स आउट माना जाएगा तो कभी राइट साइड वन टिप वन टप्पा खा के वन हैंड हो जाएगा, कभी पड़ोसी के गेट पे बॉल लगी तो आउट हो जाएगा। और बाउंड्री चप्पल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी संभाल लेती थी वो, एंड कोई कंप्लेन भी नहीं करता था क्योंकि सबको पता था कि रिसोर्सेज जो है वो काफी लिमिटेड है बट फन अनलिमिटेड है। आजकल इतने कमाल के स्पोर्ट्स के ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, टर्फ ग्राउंड्स हैं, प्रॉपर मार्किंग्स एंड एवरीथिंग, इट्स सो नाइस एंड फैंसी राइट। तब दो चप्पल और एक अग्रीमेंट ही काफ़ी हुआ करता था। ऑनेस्टली उस चप्पल वाली बाउंड्री के अंदर जो वर्ल्ड कप्स खेले गए हैं ना, उनकी इंटेंसिटी किसी इंटरनेशनल मैच से कम नहीं थी दोस्त। क्योंकि हम ग्राउंड पे नहीं खेलते थे, हम इमेजिनेशन की ग्राउंड पे खेला करते थे। यही तो है वो 90s वाला फन जिसकी हम यहाँ पर बात किया करते हैं। और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, स्टे ट्यून्ड गाइस, गाने सुनते सुनते बिल्कुल ये यादों का किस्सा और सिलसिला चलता रहेगा।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
0: आपकी नॉलेज आपकी जी।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्सटेप।
1: ये बैरल बैरल क्या है? ये बैरल बैरल आप कहोगे कि क्या हो गया? अंग्रेजी की क्लास क्यों स्टार्ट कर दी छोरी? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ मस्ती 90s मिक्सटेप पर बिल्कुल आपका स्वागत है। भाई बैरल 90s के बॉलीवुड एक्शन मूवीज का एक बहुत ही मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड हो रखा है। हीरो कहीं भी पहुंच जाए, फैक्ट्री में, वेयर हाउस में, डॉकयार्ड में, कंस्ट्रक्शन के साइट पे, वहां कुछ ना कुछ बड़े बड़े ड्रम जो है जरूर पड़े होते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है वो ड्रम कभी से ड्रम नहीं रहते थे, उनका फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता था मेरे दोस्तों। एक्सप्लोजन याद कीजिए, हीरो और विलेन की फाइट चल रही है, ठीक है, मुक्के चल रहे, डिशुम डिशुम, किक्स, ये यहां से वहां से, बैकग्राउंड स्कोर फुल वॉल्यूम पे, और फिर कोई एक बंदा ड्रम के पास जाके गिरता है और ये ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि कुछ तो उड़ने वाला है यहाँ पे, कुछ तो उड़ने वाला है, और इसका ये इंटरेस्टिंग फिल्म मेकिंग रीजन भी था। सो 90s के एक्शन डायरेक्टर्स को बैरल एक्सप्लोजन्स बहुत ज्यादा पसंद थे क्योंकि वो विजुअली काफी ड्रामेटिक लगते थे और बड़े एक्शन इफेक्ट्स के मुकाबले रिलेटिवली इकोनॉमिकल भी होते थे। मतलब अगर एक एक्सप्लोजन हुआ तो और सीन जो है इंस्टेंटली लार्जर देन लाइफ लगने लगती थी। एंड ऑनेस्टली उस वक्त हमें लॉजिक की तो कोई टेंशन थी नहीं, कभी किसी ने ऐसा पूछा ही नहीं कि ये ड्रम में क्या था, पूछा नहीं पूछा, क्योंकि ब्लास्ट तो मस्त लग रहा है। और फिर हीरो एक्सप्लोजन के बाद भी स्लो मोशन में निकलता था, कपड़े साफ, हेयर सेट, कॉन्फिडेंस फुल ऑन। साइंस उस दिन ऑफिशियली छुट्टी पे होती थी। कई बार लगता था विलेन का एक्चुअल बिजनेस कुछ और तो नहीं, ड्रम स्टोरेज का तो ये बिजनेस नहीं करता, पूरे गोडाउन में सिर्फ ड्रम्स ही ड्रम्स। लेकिन यू नो यही तो 90s के सिनेमा का चार्म था, रियलिज्म से ज्यादा एंटरटेनमेंट, लॉजिक से ज्यादा इम्पैक्ट। CGI के एक्सप्लोशन आजकल हम लोग देखते हैं बट प्रैक्टिकल इफेक्ट्स होते थे उस टाइम पे, रियल फायर, रियल स्पार्क्स, रियल ड्रामा। एंड इसीलिए 90s के एक्शन सीन्स आज भी इतने ज्यादा फन लगते हैं, जब भी देखो कहीं पर भी, गलती से आपने कभी ना कभी रिपीट पे लगाई ली होगी। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यू यू डू दैट राइट, यू रीवॉच अ लॉट ऑफ 90s का मूवी जब कुछ भी नहीं मिल रहा होता कॉन्टेंट OTT पे, बिकॉज इतना ज्यादा है कि कंफ्यूजन हो गया है कि क्या ही देखे, और फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर कहते हैं कि अच्छा छोड़ो यार कुछ पुरानी मूवी लगा लेते हैं। नहीं, वी ऑल डू दैट, इट्स ओके, इट्स ओके। स्टे ट्यून्ड, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: स्पेशल।
1: फिर भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
2: दोस्ती
0: की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे,
3: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं।
2: Desire.
1: पर जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सलूशन है।
2: Some relationships are tested, some are transformed.
4: माँ दुल्हन के लिए मेकअप।
2: Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna starrer Cocktail 2, releasing Island Wide on 19th June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore. Singapore, prepare for impact.
5: 3, 2, 1.
6: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: कसर से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें है ना, बट देन कितना बड़ा बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया करती थी 90s के वक्त पर। एंड अभी मैं बात तो जरूर करूंगी, बट याद करते हुए आपको लगेगा कि यार डिटेलिंग देखो अंतरा, डिटेलिंग, तुम्हारी डिटेलिंग पे तो मजा ही आ गया, बिकॉज यू विल रिलेट विद मी, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव में अंतरा आपके साथ यहाँ पर, और चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई किस मी का जो चॉकलेट है, टॉफी बार है, एंड टॉफी बार ही कहेंगे राइट, तो वो याद तो होगा ही ना, कि एक तो नाम किस मी है ना, दूसरा कितनी एक वाली सी याद बीच में आ गई। पहले वो बता दूं क्या होता था ना, कि उस टाइम पे कभी अगर ऐसा कुछ लड़के अगर इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कहने की ज़रूरत करते थे अपनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई अब हमें अपना रिश्ता नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने का मौका, अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते बिकॉज आता नहीं था मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो तब ये चॉकलेट वॉज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग द सेम, या फिर अगर आप वो कर चुके हो जो उस चॉकलेट का नाम में है, तो फिर वो देकर उस याद को ताजा करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना कि बहुत सारी, सो वेल कमिंग बैक टू दिस वन, देखिए 90s में क्योंकि लाइफ इतनी सिंपल थी तो कुछ चीजें ऐसी थी जो बिना वजह जो है इम्पॉसिबल भी लगा करती थी, और उस लिस्ट में किसमी टॉफी बार का जरूर नाम आता है। ठीक है, किसमी टॉफी खरीदना ईजी, ठीक है, टॉफी को खाना भी इजी, अनलाइक एल्पेनलीबे इट वाज लाइक वेरी सॉफ्ट एंड यू नो इट्स चॉकलेटी एंड इट वाज जेन्युइनली नाइस। लेकिन किसमी टॉफी बार का वो लाल रंग का रैपर, रेड एंड वाइट कलर का होता था रैपर, सीधा खोलना, सीधा मतलब आपने जैसे ऊपर से फाड़ा ना, कभी वो सीधा खुलता ही नहीं था, मिशन इम्पॉसिबल, हर बार लगता था इस बार परफेक्ट खुलेगा और हर बार गलत साइड से वो पट जाता था। किस्मी के साथ ये एक साइकोलॉजिकल बैटल चलती रहती थी कि आप केयरफुली कॉर्नर ढूंढे, ठीक है, नाखून नहीं लगाने, धीरे से उसको पुल किया और फिर पूरा रैपर रैंडम जगह से फट के हाथ में आ जाता था, एंड आधी टॉफी रैपर के साथ चिपकी हुई होती थी। फिर होता था ऑपरेशन रेस्क्यू शुरू, एंड द फनी थिंग इज दैट यू नो कोई कभी ऑफिशियली ये सारी चीज़ें आपको नहीं सिखाता राइट, उस टाइम पे 90s की मैं बात कर रही हूँ, फिर भी हर बच्चा स्ट्रगल से गुजरता हुआ आया हुआ है, जैसे ग्रोइंग अप का एक कंपल्सरी चैप्टर हो, और किस्मी खुद भी कितनी ज़्यादा उसका कैरमल का फ्लेवर, आइकॉनिक द टेक्सचर, द रैपर, सभी अलग फील देता था। कई बार तो रैपर खोलने में इतनी मेहनत लग जाती थी कि वो टॉफी मिलते ही विक्ट्री की फीलिंग आती थी कि भाई आज के स्नैक्स ईजी ओपन पैक्स में आते हैं, ठीक है, जिप लॉक पैक में आते हैं, कि यहाँ से खोलो, ओपन है, सब इंस्ट्रक्शंस के साथ आते थे, तब प्रोडक्ट भी पजल था एंड खोलने का तरीका वो अलग, हमने अपना चैलेंज बना रखा था, हर छोटी चीज थोड़ा सा एफर्ट मांगती थी और इसीलिए उसकी वैल्यू भी ज्यादा लगती थी। आया ना याद, मैंने कहा था बहुत ही डिटेलिंग वाली ये बात है, याद करो आपने भी कहना है मुझे कि ओ हो अंतरा ओ हो ठीक है, ओ हो लिखकर भेज दो मुझे 9151896 पर।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाह जी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: ग्यारह से ऊपर अगर गया तो फिर हम तुमको बताएंगे अच्छे से, बता रहे हैं अभी नहीं कि मतलब कुछ भी। ग्यारह से ऊपर इतना जोर से, पता नहीं कहानी खराब है क्या तुम्हारा कि जो तुमको सुनाई नहीं देता है। ये डांटे पड़ा करती थी एक टाइम पे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। एंड यू नो हर घर का, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट मिडिल क्लास फैमिलीज, ठीक है, 90s के टाइम पर अपने ही कानून, कायदे कानून हुआ करते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती थी ये, हर फैमिली का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, प्रिंटेड भी नहीं है, लेकिन याद सबको होता था। और उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट रूल होता था, टीवी का वॉल्यूम कितने तक जा सकता है। किसी घर में लिमिट थी 10, किसी में 12, मेरे घर में थी 11, इसीलिए मुझे 11 जो है नंबर याद है। आप देख रहे हो, मेरे को वो टीवी के वॉल्यूम का नंबर जो लिमिट का था वो भी मुझे याद है। नॉट ओनली द माय जिंदगी का जो मैंने पहला लैंडलाइन देखा था उसका नंबर भी याद है। इट इज एनीवेज, सो वेल, एक मैजिकल नंबर होता ही था कि उसके ऊपर वॉल्यूम गया तो तुरंत कहीं ना कहीं किसी रूम से आवाज आती थी कि भाई वॉल्यूम कम करो। एंड टीवी फुल ब्लास्ट पे नहीं होता था, ठीक है, बस इट हैज़ टू बी लाइक अ फैमिली अप्रूव्ड लिमिट, जो अगर क्रॉस हो गई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम पे होती थी बिकॉज ऑडियो नहीं मैच करेगा। कभी भी आप याद रखना, अभी तो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स अलग ही लेवल पे एडवांस कर चुकी है। सो मूवी चल रही है, ठीक है, नॉर्मल, अचानक से ऐड आया, वॉल्यूम ज़्यादा फील हुआ, देन रिमोट के लिए रेस शुरू की। फिर क्रिकेट मैच अगर देख रहे हैं, कमेंटेटर एक्साइटमेंट में, हम एक्साइटमेंट में, वॉल्यूम भी एक्साइटमेंट में, लेकिन घर का लॉ, तो घर का लॉ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आओ बताओ, हर फैमिली का नंबर अलग होता था, जैसे सीक्रेट पासवर्ड कि गेस्ट को पता नहीं, बच्चों को परफेक्टली पता क्योंकि उन्होंने डांट खा खा के याद किया है। वॉल्यूम 13 सेफ है, 14 पे रिस्क है। आजकल जैसे होम थिएटर्स है, साउंड बार्स है, सराउंड साउंड है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तब एक टीवी, एक रिमोट, दैट इज ऑल, लेकिन उसके साथ पूरी फैमिली भी थी, राइट, इसीलिए वॉल्यूम सिर्फ साउंड सेटिंग नहीं था, फैमिली नेगोसिएशन था। एंड 90s के घर कितने फनी थे, राइट, कोई ऑफिशियल रूल्स तो है नहीं, फिर भी सबको पता था किस शेल्फ को टच नहीं करना है, किस कप में चाय मिलती है और टीवी का वॉल्यूम कितने पे जाके रुक जाना है। या फीलिंग द 90s वाला वार्म्थ ओवर हियर, दैट्स राइट, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू मस्ती 90s मिक्सटेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Pencil se kasat ki reel suljhana. Crush ka naam haath pe likhkar hai sharmana. Aisa tha 90s ka zamana. Ye hai musty 90s mixtape jaane jana.
3: यूजुअली जो है छुट्टियों की बात तो हम करते ही हैं, बट 90s वाले संडेज की भी ना एक अलग ही उसका एक चार्म हुआ करता था, आपको नहीं लगता? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो यहाँ पर, एंड पूरे हफ्ते का वेट, ठीक है, जैसे हम लोग फ्राइडे का वेट करते हैं अब, सो वेल 90s में पूरे हफ्ते का इंतजार, होमवर्क मोस्टली खत्म, स्कूल नेक्स्ट डे का प्रॉब्लम, फ्यूचर वाले हम देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। घर में सबको पता होता था आज संडे है, मतलब मूवी वाला दिन है, लेकिन मूवी सिर्फ मूवी नहीं होती थी यार संडे के टाइम पर, वो पूरा फैमिली का इवेंट हुआ करता था। नहीं, और उस इवेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बीच में चाय बिस्कुट का ब्रेक। मूवी जो है, दिस यूज टू बी यूजुअली हमारे घर में, इट यूज टू बी द मूवी आफ्टरनून, ठीक है, कि सुबह उठे और सारा सब कुछ कर लिया एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स अपने कर लिया, लंच वंच कर लिया, देन मॉम डैड बैठते थे जो है बेड के ऊपर, टीवी ऑन किया जाता था और हम जाके बीच में एकदम अपना प्लेसमेंट कर लेते थे। सो वेल मूवी फुल इंटरेस्टिंग पॉइंट पे अगर जैसे चल रही हो, ठीक है, हीरो विलन के सामने या क्लाइमैक्स शुरू होने वाला है, तभी किचन से आवाज आती थी कि भाई चाय बन गई है, बस अचानक से सब पॉज, भाई नहीं, कोई ट्रे ला रहा है, कोई कप्स ला रहा है, कोई पार्ले जी खोल रहा है, कोई गुड्डे पे यू नो क्लेम कर चुका है ऑलरेडी, एंड यू नो उसके पीछे से मेरा भाई तो हमेशा वहां पे, मतलब वो पॉज होने ही नहीं देता था कि वापस से रिवाइंड करने में बहुत टाइम लगेगा उस चक्कर में, बट वो चीज लेके अलग झगड़ा होता था, ठीक है भाई, अब नेटफ्लिक्स ऐसी चीज़ें तो थी नहीं, राइट, इसीलिए चाय भी पीनी है, मूवी मिस भी नहीं करनी है, तो सबकी गर्दन जो है ना इस चक्कर में टीवी की तरफ रहती थी, एक आंख बिस्किट पे, दूसरी आंख स्क्रीन पे, उसके बीच में डिस्कशंस भी चल रहे हैं कि ये विलन देखो पक्का कुछ करेगा, अरे हीरोइन को मत बताओ, एंड देन जैसे पूरा फैमिली जो है रिव्यू पैनल के लिए जो है बैठ गया हूं। आज हम अलग अलग स्क्रीन पे कॉन्टेंट देखते हैं अपने हर किसी के घर में, राइट, कोई लैपटॉप में देख रहा है, कोई फोन पे देख रहा है, कोई टैबलेट में देख रहा है, तब एक टीवी, एक मूवी एंड द होल फैमिली इज टुगेदर, एंटरटेनमेंट पर्सनल नहीं था, शेयर्ड था, एंड इसीलिए वो मूवीज आज भी हमें याद है। There is a reason, there is a reason, and the reason is beautiful, the beauty of the 90s on Radio Masti 24/7 Live, jo aap jee rahe hain Masti 90s mixtape par.

0: यार।
1: फिर भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
2: दोस्ती,
3: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे,
4: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
2: Desire.
1: पर जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सोल्यूशन है।
2: Some relationships are tested, some are transformed.
5: माँ दुल्हन के लिए मेकअप।
2: Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna starrer Cocktail 2, releasing Island Wide on 19th June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
6: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
7: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
8: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
9: अरे यार, क्या क्या मतलब मस्ती 90s मिक्स टेप है दोस्तों। मैं हूँ 90s वाली अंतरा यहाँ पर आपके साथ, और ये शो चल रहा है ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। एंड एक और चीज़ याद आ गई मेरी यादों का 90s शो में, तो मतलब ऐसा लगता है कि नलका जो है एक बार खुल जाता है तो मेरे को समझ में नहीं आता। कभी कभी देर आर सो मेनी थॉट्स एट द सेम टाइम इन माय माइंड दैट विच वन टू पिक एंड चूज, बट एनीवेज आई पिक हैंड राइटिंग दिस टाइम। ओके, सो क्या है, 90s में जब नया एकेडमिक ईयर शुरू होता था, उसका होने का मतलब सिर्फ नई क्लास और वो ब्राउन पेपर कवर, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें तो होती थी, बट इट वॉज ऑल्सो नया वर्जन ऑफ आर सेल्व्स, ये भी होता था। हर साल एक रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट सब लेते थे कि चाहे वो ऑफिशियली लो या अनऑफिशियली लो, इस साल मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी होता था ना, क्योंकि नई नई नोटबुक्स है, एकदम शुरू वाले, मतलब ताजे ताजे पन्ने, ठीक है, नए नए कवर्स, पहले पेज के हैंडराइटिंग, ओहो हो, माशा अल्लाह, ऐसा लगता था जैसे कैलीग्राफी कंपटीशन में मतलब आप ही जीतने वाले हो। हर लेटर जो है परफेक्टली शेप, हर लाइन सीधी, हर हेडिंग ब्यूटीफुल, भाई कलर्स यूज हो रहे हैं, टीचर्स भी इम्प्रेस, हम खुद भी इम्प्रेस अपने आप से। लेकिन फिर आता था डे टू, थोड़ा स्पीड बढ़ा, डे थ्री होमवर्क ज़्यादा आ गया, डे फोर साइंस के नोट्स, मैथ्स क्लास, डिक्टेशन, फिर हैंड राइटिंग धीरे धीरे अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाया करती थी। सेप्टेम्बर तक तो नोटबुक के फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का कभी अगर ऐसा आपको याद हो, लगता था दो अलग अलग लोगों ने वो लिखा हुआ हो। हर साल यही साइकिल रिपीट होता था, फिर भी अगले साल का कॉन्फिडेंस कितना फुल रहता था, नहीं कि नहीं नहीं नहीं इस बार वापस से पक्का से। सो 90s के बच्चों को फ्रेश स्टार्ट्स पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा था कि नया पेंसिल बॉक्स, नई बुक्स, नई क्लास टीचर और नई हैंड राइटिंग, हर साल लगता था अब सब बेटर होगा। ऑनेस्टली वो ऑप्टिमिज्म भी ना कितना ब्यूटिफुल था यार। आज हम ये जो है आई थिंक रेजोल्यूशन जो न्यू ईयर पे, वो भी इसी उम्मीद के साथ बनाते हैं, बट तब एकेडमिक ईयर भी कैसा मिनी न्यू ईयर के जैसा लगता था ना, कि हर ब्लैंक नोटबुक पे एक मौके के जैसा यू नो फील आता था कि कुछ नया करना है, कुछ बेटर करना है, चाहे वो सिर्फ हैंड राइटिंग ही क्यों ना हो कितने स्पेशल थे ना वो दिन। वेल, जब मैं आज भी वही होता है कि अगर मैं आराम से लाइक किसी के लिए कोई गिफ्ट है या फिर कार्ड लिख रही हूँ कुछ हो, और बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, देन माई राइटिंग, आई ऑलवेज हैड अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, तो मैं बहुत अच्छे से लिख लेती हूँ एंड एवरीथिंग। बट जैसे ही आपने जल्दी जल्दी नोट्स अगर मेरे देख लिए, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो दो पर्सनैलिटी है यहाँ पर कुछ हम डॉक्टर्स तो मतलब कुछ नहीं, हमारी हैंड राइटिंग के सामने होता नहीं था कि जब टीचर बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, आप ले फिर घर जाके आप उसको डीकोड कर रहे होते हो कि यार क्या ही लिख दिया है मैंने ये। डूड, 90s के वो अमेजिंग थे।

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप पर। चलिए किचन में जाते हैं, किचन में फ्रिज की तरफ जाते हैं, चलेंगे भाई 90s में घरों पे एक ऐसी जगह थी जिसका एक्चुअल पर्पस किसी को ऑफिशियली पता ही नहीं होता था, लेकिन पूरे घर का इंपॉर्टेंट सामान वहीं पर मिलता था। बताए तो कौन सी जगह है वो? फ्रिज के ऊपर, अंदर नहीं। फ्रिज के अंदर तो दूध, सब्जी, आइसक्रीम, ये सारी चीजें होती थी, लेकिन फ्रिज के ऊपर पूरा अल्टरनेट यूनिवर्स हुआ करता था। वहां आपको दवाइयां मिल जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी मिल जाएंगे, रबर मैंड्स मिल जाया करेंगे, ओल्ड पुराने वाले जो ग्रीटिंग कार्ड्स जो हैं वो भी, खाली डब्बे भी, और एक दो मिस्टीरियस बॉक्सेस भी मिल जाएंगे जिन्हें सालों से किसी ने खोला ही नहीं है। हर घर में ना अरेंजमेंट अलग अलग होता था, ठीक है, लेकिन फ्रिज के ऊपर का स्टोरेज होना ऑलमोस्ट यूनिवर्सल था। जैसे घर खरीदते वक्त हिडन रूल किसी को मिला हो और जब मम्मी बोलती कि बेटा फ्रिज के ऊपर वाली फाइल देना, बस फिर तो ट्रेजर हंट अलग ही शुरू होता था, क्योंकि वहां चीजें की कैटेगरीज तो डिवाइडेड नहीं होती थी ना, हिस्ट्री के हिसाब से रखी हुई होती थी। नया बिल, पुराना बिल, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, टॉर्च, बैटरी, सब एक ही नेबरहुड में। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मम्मी को एग्जैक्ट लोकेशन पता होती थी। हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे ढूंढते जा रहे, वो आती 10 सेकंड में निकाल देती। आजकल ना ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स हैं, एप्स हैं, डिजिटल फोल्डर्स हैं। तब फ्रिज टॉप मैनेजमेंट सिस्टम था, सरप्राइजिंगली काम भी करता था। 90s के घर जो है वो परफेक्ट नहीं थे यार, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत थे। हर कॉर्नर का सेकंड पर्पस होता था, बेड के नीचे का स्टोरेज, टीवी के कैबिनेट का स्टोरेज, फ्रिज के ऊपर के हेडक्वार्टर्स। इसीलिए 90s के घर इतने लिव्ड इन और ये बड़े वार्म से लगते हैं, क्योंकि हर शेल्फ और हर कॉर्नर अपनी ही कहानी लिखा करता था। आज भी किसी पुराने घर में फ्रिज के ऊपर रैंडम बॉक्सेस, मेडिसिन, बिल्स रखे देखे तो दिल एकदम तुरंत बोलता है कि यार घर सही चल रहा है, एकदम मस्त रैपचिक निकलता हुआ जा रहा है। मेरे को तो ये भी याद आ रहा है कि फ्रिज के ऊपर ना एक कवर के जैसा मम्मा लगाती थी, उस कवर को जस्ट उसका टॉप जो है वो कवर होता था और साइड में ऐसे नीचे लटकता था और उसमें पाउचेस हुआ करते थे। सो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है और छोटी डायरी और बहुत सारी चीजें वो पाउचेस में ही इकट्ठा हुई जाती थी साइड में। याद आया, आई एम सो विजुअल राइट नाउ। आई एम श्योर दैट आपके किसी ना किसी के घर में 90s के टाइप या फिर आज की डेट में भी ऐसा कुछ मिल जाए, यू नेवर नो। ये मस्ती 90s मिक्स टेप।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट online.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है।
3: दोस्ती
4: की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे,
5: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
2: पर जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है तो इससे बचने का एक ही सलूशन है।
6: सम रिलेशनशिप्स आर टेस्टेड, सम आर ट्रांसफॉर्म्ड।
7: माँ दुल्हन के लिए मेकअप।
6: शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2, रिलीजिंग आइलैंड वाइड ऑन 19th जून एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर।
8: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्सटेप।
1: ये आपका इंतजार था लेकिन अब वो इंतजार यहाँ जाने का है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव एंट्रा आपके साथ यहाँ पर चल रहा था, बोलना पड़ेगा मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई एक और एपिसोड जो है अपने आखिरी पन्ने पर यहाँ पे पहुंच चुका है और आज का सफर भी कुछ ऐसा था कि पुराने घर की अलमारी खोलते खोलते अचानक से एक फोटो एल्बम मिल जाए, वैसी वाली फील की। हमने याद किया वो एल्पेनलीबे वाले साइंस एक्सपेरिमेंट, वो स्कूल बैग के जिप में छुपा हुआ 5 रुपए का नोट, यू नो द फॉरगॉटन जैकपॉट टाइप्स फीलिंग, ठीक है। बॉलीवुड में रिफ्लेक्शन के शॉट्स, वो चप्पल वाली हमारी क्रिकेट की गली, क्रिकेट की बाउंड्री, दैट दोस एक्सप्लोडिव एक्सप्लोडिंग वाले बैरल्स जो हर एक्शन फिल्म के काइंड ऑफ सपोर्टिंग कैरेक्टर हुआ करते थे, किस्मी के रैपर्स जो कभी भी सीधे नहीं खुलते थे, वो टीवी वॉल्यूम के लिमिट्स, वो संडे मूवी का साथ में चाय बिस्किट होना, वो यू नो हर साल हैंड राइटिंग सुधारने वाला रेजोल्यूशन, और ऑफकोर्स अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी वो फ्रिज के ऊपर वाली दुनिया जहाँ बिल्स मेडिसिन और रैंडम बॉक्सेस एक साथ साथ साथ रहते थे। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी, ये सब बहुत ही ऑर्डिनरी सी, मासूम सी बिल्कुल चीजें थी। कोई ग्रैंड इवेंट नहीं है, कोई हिस्टोरिक मोमेंट नहीं है, कोई लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट नहीं है, बस रोजमर्रा की जिंदगी। और शायद वही 90s का असली मैजिक था। उस वक्त ऑर्डिनरी यानी कि सिंपल चीजें भी याद बन जाती थी। एक रैपर, एक वो 5 का नोट, एक वो संडे की मूवी, एक वो स्कूल का नोटबुक, क्योंकि हम उन्हें सिर्फ यूज नहीं करते थे, उनके साथ वक्त बिताते थे। आज हमारे पास कन्वीनियंस काफी है, स्पीड ज्यादा है, ऑप्शंस ज्यादा है, लेकिन उस वक्त एक अलग चीज ज्यादा थी, अटेंशन। हम छोटी छोटी चीजों को नोटिस किया करते थे और वही छोटी चीजें आज इतनी बड़ी यादें बनकर वापस आती हैं। शायद इसीलिए 90s को याद करते वक्त हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स या प्लेसेस याद नहीं करते, हमें अपना पुराना वर्जन जो है याद आता है, वो जो हर चीज़ में एक्साइटमेंट ढूंढ लिया करता था, वो जो 5 रुपए मिलने पर ही खुश हो जाता था, वो जो संडे मूवी को इवेंट समझता था, वो जो हर नए साल के साथ जेन्युइनली बिलीव करता था कि इस बार हैंड राइटिंग पक्का अच्छी होगी ही होगी। वेल, आपकी 90s वाली आंसरा इन्हीं मीठी मीठी यादों को आपके साथ छोड़ कर जा रही है एंड मिलेंगे वापस से अगले हफ्ते एकदम एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ और मस्ती 90s मिक्सटेप। यू हैव अ फैंटास्टिक डे, बाय बाय एंड टेक केयर।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जिस चीज पर हाथ रखे वो सोना बन जाए, क्यों ना आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताया जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय अखा सिंगापुर मारू जय। एक बार फिर से समर आ गया है लेकर लेजेंड्स। आज अचीवर सीरीज में मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ उनके बारे में आपको क्या बताऊँ। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें द स्टील मैन के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, और ये बोलते ही आप भी समझ गए होंगे कि मैं आज किसकी बात कर रहा हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ, आपको मिलवाने वाला हूँ, उनकी जिंदगी का सफर तय करवाने वाला हूँ, जिन्हें हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण मित्तल, यानी एलन मित्तल, द स्टील किंग, जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया है और इंडियंस का सर फख्र से ऊंचा किया है। लक्ष्मी जी का जन्म हुआ जून 15, 1950 सादुलपुर राजस्थान में, एक ऐसे परिवार में जहां एक घर में 25 फैमिली मेंबर्स रहा करते थे, और लक्ष्मी जी ने अपना बचपन फर्श पर दरी बिछाकर सोकर निकाला है। लेकिन फिर साहब उनके फादर ने डिसाइड किया कि वो कोलकाता मूव कर जाएंगे, और वहां जाकर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और उन्होंने एक स्टील मिल वहां डाल ली। लक्ष्मी जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन स्कूल के बाद वो अपने फादर के साथ

0: मन्नु लेट्स गो।
1: चलो हम चले गए, प्रश्न ही उठता, मैं तो सो ही जाता।
0: अरे बाहर निकलो।
2: ये आप मुझे कहाँ ले आए?
0: ये आप बंद करो।
2: सॉरी
0: टोकरी संभालो। लो जगह कैसी है?
2: बड़ी प्यारी जगह। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
0: अरे गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
2: और भला क्या काम हो सकता है?
0: और बहुत से काम हो सकते हैं।
2: जैसे?
0: कर सकोगे?
2: मैं हर काम कर सकता हूँ।
0: सोच लो।
2: सोच लिया।
0: और अगर ना कर सकी तो?
2: हार मान जाऊंगा।
0: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
2: क्या?
0: हाँ अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठा के सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
2: टोकरी?
0: मंजूर।
2: मंजूर, काम तो बताइए।
0: जरा सोच तो लूँ। वो देखते हो वो?
2: हाँ।
0: क्या?
2: मुर्गी।
0: हाँ पकड़ लाओ।
2: मुर्गी?
0: हाँ।
2: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ, ये लीजिए।

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब की जिंदगी के सफरनामे से। इनकी स्टोरी बिल्कुल रैक्स टू रिचेस वाली कहानी है। लक्ष्मी जी जिस जगह पैदा हुए थे वहाँ उस जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी, और उन्होंने एक बड़ा प्यारा किस्सा शेयर किया एक इंटरव्यू में, जो ये जताता है कि वो एक बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे। उन्होंने बताया कि हालांकि उनकी फैमिली हर हफ्ते मूवी देखने जाया करती थी, लेकिन उन्होंने अपने आधे बचपन तक कभी रेस्टोरेंट में कदम तक नहीं रखा था। और जब वो 14 साल के थे वो पहली बार किसी रेस्टोरेंट में गए, और वो रेस्टोरेंट था कोलकाता का पार्क स्ट्रीट का रेस्टोरेंट ट्रिंकलेट्स। वो बताते हैं कि वो लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग लम्हा था और आज तक है। जबकि आज तो वो वक्त है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 16 साल के लक्ष्मी मित्तल ने 1976 में डिसाइड किया कि वो इंडोनेशिया जाकर स्टील का काम करेंगे, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट ने स्टील प्रोडक्शन पर काफी कंट्रोल कर लिया था और उन्हें काम करने की फ्रीडम कुछ कम महसूस हुई। फाइनली वो इंडोनेशिया पहुंचे और वहां उन्होंने स्पात इंडो के नाम से एक अपना स्टील प्लांट शुरू कर दिया और 10 साल तक उसे बड़ी ही इफिशियंटली चलाया। और फिर उन्होंने ट्रिनिडेड और टोबैगो में स्टेट ओन्ड स्टील वर्क्स की वो कंपनी खरीदी जो बहुत भारी लॉस में चल रही थी, लेकिन ये खुद अपने आप में एक बहुत रिस्की डिसीजन था। आपको क्या लगता है कि इन लॉस में चल रही कंपनीज का फ्यूचर लक्ष्मी मित्तल के हाथों में सेफ रहेगा? क्या होगा बता

0: भी रिश्ता जब नया होता है ना एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है।
1: दोस्ती
2: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
0: और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है तो इससे बचने का एक ही सलूशन है।
3: Some relationships are tested, some are transformed.
4: Maa, dulhan ke liye makeup.
3: Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna starrer Cocktail 2. Releasing island-wide on 19th June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore. आपकी नॉलेज आपकी जीत।
5: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में एक बार फिर से कर रहा हूं आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं स्टील किंग एलन मित्तल साहब की। जी हाँ, वही जिनमें ये गुण था कि वो स्टील को भी छू लें तो सोना बना देते थे। द स्टील मेकर लक्ष्मी मित्तल। 1989 में लक्ष्मी मित्तल ने ट्रिनिडेड और टोबैगो में वो गवर्नमेंट ओन्ड फर्म्स खरीदी जो एक दिन में $1 मिलियन का लॉस दे रही थी। एक दिन में $1 मिलियन का लॉस, और इस सिचुएशन में US कंसल्टेंट्स और जर्मन एक्सपर्ट्स भी कोई सलूशन नहीं ढूंढ पा रहे थे। लेकिन जब लक्ष्मी मित्तल ने इन कंपनीज को खरीदा तो वाकई मिट्टी को सोने में तब्दील कर दिया, और धीरे धीरे लक्ष्मी जी ने खुद पर भरोसा रखते हुए पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। और इसी तरह दुनिया भर की ऐसी ही लॉस में चल रही फर्म्स एक्वायर कर ली और अपने एफर्ट्स की वर्थ प्रूव की। इस एक्विजिशन की लिस्ट में शामिल थे बड़े बड़े नाम। 1992 में सिरकास्टा, जो कि मेक्सिको की थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर थी, कजाकिस्तान की स्टेट ओन्ड स्टील ब्लास्ट फर्नेस प्लांट, और 1995 में एक स्टील प्लांट इन यूरोप जर्मनी, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू कंपनीज स्पात इंटरनेशनल लिमिटेड एंड स्पात शिपिंग टू असिस्ट द ग्रुप। तो साहब, मित्तल साहब की फिलोसफी उस वक्त काम आई जब एक इंडस्ट्री वीक पड़ रही थी। हालांकि स्टील डिमांड उस वक्त काफी ज्यादा थी, लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज अपने मेजर क्लाइंट्स के साथ डील स्ट्राइक ही नहीं कर पाती थी, और मित्तल साहब ने इस कमजोरी की नब्ज पकड़ ली और जल्द ही उनकी कंपनी एक और बड़े एक्विजिशन के लिए तैयार हो गई थी, विच फर्दर टुक हिज स्टील बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। हाँ भाई, समर के साथ मैं भी आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा, यानी अगले गाने की तरफ और उसके बाद अगले किस्से की तरफ। एलन मित्तल साहब की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
4: हाँ जी जी।
3: आधा kg मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू, किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ और आज मैं आपको सुना रहा हूं लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब की कहानी लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब का ये मानना रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कीप इमोशंस अवे, एंड आई गेस इनके बिजनेस में इसी चीज ने इन्हें एक पुश दिया है, क्योंकि इनके लॉस में चल रही कंपनीज को अक्वायर करने के डिसीजन से ये क्लियरली लग रहा है कि ही ऑलवेज थिंक्स विद हिज ब्रेन्स एंड नॉट द हार्ट व्हेन इट इज अबाउट बिजनेस। एलन मित्तल साहब की कंपनी ने अमेरिकन मार्केट में अपनी काफी अच्छी जगह बना ली और 40% मार्केट को उनकी कंपनी कंट्रोल करती थी। एंड दे सप्लाइड स्टील फॉर कार मेकिंग टू द अमेरिकन मार्केट, जिसकी वजह से वो दिमाग से नेगोशिएशंस कर पाते थे। 2004 में लक्ष्मी मित्तल ने अपनी कंपनी स्पात इंटरनेशनल और LNM होल्डिंग्स को मर्ज किया और एक ओयो बेस्ड इंटरनेशनल स्टील ग्रुप को परचेज कर लिया। इस नई कंपनी को नाम दिया गया मित्तल स्टील कंपनी NV, एंड इट टर्न आउट टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील मेकर। और 2 साल बाद 2006 में मित्तल साहब की कंपनी ने एक और मर्जर देखा, जब मित्तल स्टील का नाम जुड़ा विद आर्सेलर टू फॉर्म आर्सेलर मित्तल। स्टील बिजनेस के साथ इनकी कंपनी ने और भी कई काम शुरू किए, जैसे शिपिंग, कोल, पावर एंड ऑयल एंटरप्राइजेस। लेकिन आगे जाकर इनकी कंपनी आर्सेलर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या रही वो मुश्किलें जिनका सामना लक्ष्मी मित्तल करते चले गए और कभी अपने काम पर उन मुश्किलों का असर नहीं होने दिया, जानेंगे थोड़ी ही देर में ऑन द शो लेजेंड्स।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। लेजेंड्स पर आप हैं समर के साथ और आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब की, द स्टील मेकर, जिनकी जिंदगी में रुकावटें बहुत आईं, लेकिन उन्होंने उन रुकावटों को फुल स्टॉप न मानकर कॉमा ही माना और आगे बढ़ते चले गए। जहां लक्ष्मी मित्तल दुनिया भर में माने जाते थे इस बात के लिए कि वो लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी एक्सीलेंट मैनेजरियल कैपेबिलिटीज के थ्रू, वहीं 2001 में मित्तल स्टील को एक नई परेशानी का सामना भी करना पड़ा जब उन्होंने अपनी आयरिश स्टील प्लांट बंद करने का फैसला लिया और फिर उनकी कंपनी को कई कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कई बार मीडिया ने उनकी लेविश लाइफस्टाइल को लेकर भी कई सवाल और कॉन्ट्रोवर्सीज पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मित्तल साहब का तो मानना रहा है कि मीडिया का तो काम ही है टू क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सीज। वो अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहे, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपनी तरह से। इसे कहते हैं पावर ऑफ नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय एनीथिंग। और बातें कितनी भी होती रहे, लक्ष्मी मित्तल कभी इन बातों का असर अपने काम पर नहीं होने देते। लेजेंड शो पर आप हैं समर के साथ और मैं आपसे
2: You are tuned into Radio Mastin 24/7 Live, keeping you entertained on the go.

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो। समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आज आपको लक्ष्मी नारायण मित्तल से मिलवा रहा हूं मैं समर, और आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्टील मैन लक्ष्मी नारायण मित्तल के बारे में आपको कुछ और बताते हैं। वो कहते हैं ना, जो आपके नाम का मतलब होता है उसमें इतनी पावर और एनर्जीज होती है कि इंसान की पर्सनैलिटी उसके काम के मतलब से काफी अफेक्ट होती हैं, और लक्ष्मी जी का जैसा नाम है उस बात से ये कही गई बात काफी हद तक प्रूव हो जाती है। अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज और बिजनेस का फ्यूचर देखने के टैलेंट के जरिए आज वो अपने फैमिली बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जा चुके हैं, और इसी वजह से आज उनकी वर्थ 1180 करोड़ यूएस डॉलर्स है। बट नथिंग कम्स इजीली भाई साहब, क्योंकि हर चीज की कीमत है। जहां उन्होंने अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है, वहीं उनकी इस कमाई को वो जहां चाहे खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो जहां हैं शायद इस बात की कीमत रही है कि ही हैज बीन अ मीडियाज फेवरेट हु क्वेश्चन हिज लाइफस्टाइल ऑल द टाइम। लक्ष्मी जी का इस बारे में सिर्फ एक ही बात कहना है कि एक हद के बाद पैसा आपके लिए गैर मामूली हो जाता है, एंड आई बेट दैट ही हैज अर्न द राइट टू मेक हिज स्टेटमेंट। जब उन्होंने लंदन में किंसिंगटन पैलेस गार्डन्स खरीदा तो उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि वो दुनिया का सबसे महंगा घर खरीद रहे हैं। उन्होंने घर देखा और उनकी फैमिली को वो पसंद आ गया, और उन्होंने उस मकान को खरीद लिया। इट वॉज एज सिंपल एज दिस। थोड़ी देर में मैं आपको लक्ष्मी नारायण मित्तल जी के घर के अंदर लेकर चलूंगा। आप

0: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स

0: Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब की कहानी। एलन मित्तल साहब ने 2004 में लंदन की सबसे एक्सपेंसिव लोकेलिटी केंसिंगटन गार्डन पैलेस में घर खरीद लिया और दुनिया चौंक गई, क्योंकि उन्होंने उस वक्त का दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर खरीदा था, जिस पर लोगों ने बातें भी खूब बनाई। लेकिन भाई बात साफ है, उनकी मेहनत, उनका स्ट्रगल, उनका पैसा और उनका घर खरीदने का डिसीजन सिंपल है, वही खरीदेंगे। भाई अगर कोई हॉलीवुड स्टार ये एक्सपेंसिव घर खरीदता तो शायद हमने इस तरह से स्टेप को कंडेम नहीं किया होता। लेकिन क्योंकि ये कदम लंदन में रहने वाले एक भारतीय ने लिया तो पूरी दुनिया को आजादी मिल गई कुछ भी कहने की, बात करने की, कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने की। नॉट फेयर, नॉट एट ऑल। आई थिंक रादर ये एक बड़ी ही फक्र की बात है। आपको पता है घर कितना मैजेस्टिक है? वेल ऑफ कोर्स, जब ये कभी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर था तो मैजेस्टिक तो होगा ही। 128 मिलियन डॉलर्स में खरीदा गया ये घर। इस घर के अंदर 12 बेडरूम्स समाये हुए हैं, जहां हर बेडरूम में रॉयल टर्किश बेड्स लगे हुए हैं। एक आलीशान डाइनिंग हॉल है और घर में ही स्विमिंग पूल भी है। और इस मेंशन की खास बात यह है कि इसमें जो मार्बल्स लगे हुए हैं वो ताजमहल में जिन मार्बल्स का इस्तेमाल हुआ है उसी क्वालिटी के मार्बल्स हैं। और इसी वजह से इस मेंशन को ताज मित्तल के नाम से भी जाना जाता है। एंड ऑफ कोर्स जब ये एक एक्सपेंसिव लोकेलिटी है लंदन की, तो यहाँ लंदन के नामी गिरामी लोग रहते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कभी यहाँ प्रिंसेस डायना रहा करती थी और ये घर बर्नी एक्लिस्टोन का हुआ करता था, जो फॉर्मूला 1 रेसिंग का बॉस हुआ करते थे। और ये घर उन्होंने अपनी वाइफ के लिए खरीदा था एंड लेटर ऑन लक्ष्मी मित्तल को बेच दिया।

0: होशियार।
1: फिर भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
2: दोस्ती,
3: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे,
4: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
2: डिजायर,
1: पर जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सोल्यूशन है।
2: Some relationships are tested, some are transformed.
5: Maa, dulhan ke liye makeup.
2: Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna starrer Cocktail 2. Releasing island-wide on 19th June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore. आपकी नॉलेज आपकी जीत।
6: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स और आज मैं समर आपको मिलवा रहा हूँ स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल साहब से। ऑफ कोर्स वो फिजिकली हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उनकी बातें हमारे शो पर हैं, उनकी मौजूदगी का एहसास करा रही हैं। फेरी टेल वेडिंग जो कहा जाता है वो सिर्फ कहा नहीं जाता, किया भी जाता है। जब एक बाप अपनी बेटी को कहता है कि बेटा मैं तेरी शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ तो वो पूरी कोशिश करता है अपने वादे पर खरा उतरे। और जब यही वादा लक्ष्मी नारायण मित्तल अपनी बेटी वरीशा मित्तल से करते हैं तो वो कोई भी कोशिश अधूरी नहीं छोड़ते। वरीशा मित्तल की शादी दुनिया की आज तक की सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग्स में से एक है, जहां 1000 गेस्ट्स को इंडिया से पेरिस फ्लाई करवाया गया था और लग्जरी होटल्स के 600 रूम्स बुक्ड थे। 24 आवर स्नैक बार के साथ होटल ग्रैंड इंटरकॉन्टिनेंटल का फर्स्ट फ्लोर ब्यूटी सलून बना दिया गया था, जहां एक्सक्लूसिव टेलीविजन चैनल्स चल रहे थे ब्रॉडकास्टिंग द वेडिंग प्रिपरेशंस। 38 शेफ्स ने 100 से ऊपर के खास खाने प्रिपेयर किए थे। वरीशा के कॉस्ट्यूम्स इंडिया के डिजाइनर्स तरुण ताहलियानी, सुनीत वर्मा और अबू जानी संदीप खोसला ने तैयार किए थे और संगीत की तैयारी बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर फराह खान ने करवाई थी। यही नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए काइली मिनोग, अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय को बुलाया गया था। साथ ही साथ शाहरुख खान और जूही चावला ने एक स्पेशल गिग से सभी गेस्ट्स को खूब हंसाया। हालांकि द फादर ऑफ द ब्राइड लक्ष्मी नारायण मित्तल नहीं चाहते थे कि ये शादी एक मीडिया अफेयर बने, लेकिन उन्होंने शादी को कवर करने के लिए एक बॉलीवुड डायरेक्टर को हायर किया था और वेडिंग की कुछ ही पिक्चर्स मीडिया को भेजी गई थी फॉर कवरेज। मुंबई से आर्टिस्ट्स को पेरिस फ्लाई करवाया गया था मंडप लगवाने के लिए। हॉलैंड से फ्लावर्स आए थे, कोलकाता के फेमस शेफ मुन्ना महाराज को कोलकाता से फ्लाई करवाया गया। साथ ही संगीत परफॉर्मेंस के लिए जावेद अख्तर साहब ने एक स्किट लिखा जिस पर पूरा मित्तल परिवार परफॉर्म करने वाला था, जिसने किया। और इस शादी की एक और खास बात ये रही कि एंगेजमेंट का फंक्शन पैलेस ऑफ वर्साइल्स में हुआ, जहां आज तक किसी शादी की परमिशन नहीं दी गई थी। एंड दिस प्रूव्स हाउ पावरफुल लक्ष्मी नारायण मित्तल वॉज, के फॉरेन लैंड में होते हुए भी ऐसी चीजें भी वो मैनेज कर रहे थे। ऑल इन ऑल दिस वॉज मोर देन अ बिग फैट इंडियन वेडिंग, जो जिस किसी ने भी अटेंड की उसकी जिंदगी का इकलौता ऐसा एक्सपीरियंस विटनेस किया होगा, नो मैटर हाउ बिग दैट पर्सन माइट हैव बीन। लक्ष्मी नारायण मित्तल का मानना है कि बेटी की शादी एक बार होती है और आप ये सभी खर्चे एक बार करते हैं।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
4: हाँ जी जी।
3: आधा kg मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू, किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाह जी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह उछल कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। रेडियो 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूँ समर और लेजेंड्स पर आज हैं आप लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब के साथ, मतलब उनकी हम कर रहे हैं बात। लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब इज अ फैमिली मैन, जो कि उनके एक्ट से पता लग जाता है वो अपनी फैमिली के लिए क्या नहीं करते, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिमसेल्फ वो फुटबॉल, क्रिकेट और रेसिंग पसंद करते हैं। यहाँ तक कि इस शौक की वजह से उन्होंने फुटबॉल क्लब क्वींस पार्क रेंजर्स FC के 34% स्टेक खरीदे हुए हैं। खाने में वो बटर चिकन या बटर पनीर पसंद करते हैं, जो ये जता देता है कि वो भले ही सालों से इंडिया से बाहर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का इंडियन अभी बाहर नहीं गया है, उनके अंदर ही है। उनके पास भले ही फ्लीट ऑफ कार्स हैं, जेट हैं, यॉट हैं, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल अपनी लग्जरी बसेस में करें, और लग्जरी बसेस भी ऐसी हैं जिनमें हर वो फैसिलिटी है जो कि किसी भी 5-स्टार होटल रूम में होती है। फर्नीचर से लेकर कार्पेट्स तक, रूम के साथ बाथरूम भी है और साथ ही बस में कार पार्क करने की स्पेस भी है। हालांकि इन बसेस की वैल्यू $1,00,000 है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से बसेस को कस्टमाइज करवाया हुआ है। और जब लक्ष्मी मित्तल से किसी ने पूछा कि उनकी वीकनेस क्या है, तो उनका कहना था कि उनका काम और इंडस्ट्री ही उनकी वीकनेस है। वो कहते हैं कि अब वो सिचुएशन नहीं रही कि वो पैसे के लिए काम करें, अब वो काम करते हैं तो स्टील इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। हम भी आगे बढ़ते हैं शो पर, आप सुनते रहे।

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। लेजेंड्स पर आप हैं मैन ऑफ स्टील या स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल की कहानियां सुनते हुए समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वेलकम बैक। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2002 में मित्तल साहब को 8th richest man of Britain का खिताब मिला था, लेकिन वो ब्रिटेन के सिटीजन नहीं है। आज भी उनके पास इंडिया की ही सिटीजनशिप है, क्योंकि उन्होंने वहां की सिटीजनशिप ली ही नहीं है इतने सालों में। In 2001, Forbes placed Mittal as the 6th wealthiest person in the world. और 2015 में रिसेशन के बाद वो अपनी ये पोजीशन रिटेन नहीं कर पाए और फिर पहुंचे वो 82nd रैंक पर ऑन द लिस्ट ऑफ वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। 2015 में ही फोर्ब्स की लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड में लक्ष्मी मित्तल साहब वॉज रैंक्ड ऑन द 57th स्पॉट। इतना कमाने की दौड़ में उन्होंने सिर्फ लिया ही नहीं बल्कि काफी कुछ दिया भी है। स्पोर्ट्स की फील्ड में उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया है। उन्होंने मित्तल चैंपियनशिप ट्रस्ट सेटअप किया है टू सपोर्ट 10 इंडियंस हु कैन कम्पीट एट द इंटरनेशनल लेवल। लंदन के ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल में उन्होंने आज तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, 15 million pounds इसके लिए उन्होंने दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन को बहुत हैंडसम अमाउंट डोनेट किया है और उनके बड़े दिल की वजह से उन्हें कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। 2001 में उन्हें डॉस्ट्राइक 1 अवार्ड दिया गया बाय द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा। स्पेन में ही वॉज अवार्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ सिविल मेरिट। लंदन में ही वॉज ऑनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ किंग्स कॉलेज। 2014 में ही रिसीव्ड द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड फोर्ब्स ऑनर्ड हिम विद द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। करेंटली वर्किंग एज द सीईओ ऑफ ArcelorMittal, द फायर इन हिम स्टिल लाइट्स अप पीपल अराउंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के शो पर आपको खुदा हाफिज बोलने से पहले लक्ष्मी मित्तल साहब की कही एक बात आपको कोट करना चाहूंगा जो हम सब के लिए हमारी जिंदगियों में फायदेमंद होगी, मोटिवेट करेगी। ही बिलीव्स ऑलवेज थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटीज दैट अपीयर व्हाटएवर दे माइट बी। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। इसी वादे के साथ के फिर मिलूंगा और कुछ वादे आपसे चाहूंगा कि कहिए आप क्या आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: होशियार।
1: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
2: दोस्ती,
0: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे,
3: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
2: डिजायर,
1: और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सलूशन है।
2: Some relationships are tested, some are transformed.
4: माँ दुल्हन के लिए मेकअप।
2: शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2, रिलीजिंग आइलैंड वाइड ऑन 19th जून एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर।
5: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इनकी शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल. इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेले है।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
0: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: वेलकम टू द जंगल, वेलकम वेलकम। आप जंगल से जब हुआ है तो जंगल में मंगल की बातें करेंगे हम यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर। इट्स मस्ती मैडनेस,
1: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमी। ये मस्ती मैडनेस का जंगल ही तो है जहां पर अलग अलग तरीके के जो है जानवर से रिलेटेड न्यूज, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड न्यूज, देश के ग्लोब के ऐसी ऐसी जगहों से न्यूजें आती है कि और ऐसी ऐसी आती है कि बच के जाओगे कहां इन दो शेरनियों से फिलहाल।
0: वाह वाह, क्या ओपनिंग है। मतलब ऐसा लगा कि हम तो जू से पेश कर रहे हैं आज का ये खास हमारा शो। इट्स कॉल्ड मस्ती मैडनेस गाइस एंड वेलकम वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, यहाँ पर अंतरा और रेणुका पहुंच चुके हैं और आप जानते हैं कि ये वाला शो हमारा सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे मॉर्निंग आता है, तो वेल ऑब्वियस है कि फ्राइडे ही होगा, राइट? सो गेट रेडी फॉर द वीकेंड गाइस एंड मीनवाइल कमीने के साउंड ट्रैक से वाला गाना सुनेंगे सुबह सुबह। क्यों अंतरा, ये मूवी का गाना कैसे आ गया अचानक से? अंतरा यहाँ पर क्या कहना चाहती हो?
1: मतलब आज तो मतलब फ्राइडे का ये शो है तो ये यही वाला गाना ही तो आना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि रियलिटी और लाइफ जो है ना फ्राइडे को ज्यादा हिट करती है।
0: सही बात, बिल्कुल सही फरमाया, क्या बात है। 7:07 और यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर। वेलकम टू मस्ती मैडनेस,
2: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: you're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: किस जमाने में हम लोग रह रहे हैं?

0: हैं उस बात का अंदाजा आई थिंक फ्राइडे के इस मस्ती मैडनेस के शो से ज्यादा तो हमें कभी नहीं हो सकता।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: मस्ती मैडनेस पर क्रेजी क्रेजी बातें करने के लिए सुबह सुबह हम आ पहुंचे हैं। व्हेन वी से क्रेजी वी मीन द वर्ल्ड इज क्रेजी, हम नहीं। हमारा फर्ज तो सिर्फ ये है कि हम आप तक वो बातें लेकर आए जो कि बड़ी अजीब सी लगती हैं। क्यों अंतरा जी, क्या खबर लाई हैं आप?
0: भाई, have you heard about these dopamine sites?
2: Okay. Interesting.
0: Everybody is talking about it. So South Korea mein basically there is this trend which is going on which is called dopamine sites. Okay. They are फेक ई कॉमर्स की साइट है, प्लेटफॉर्म्स है ये। तो बेसिकली वो आपको पूरा जो शॉपिंग का एक्सपीरियंस होता है सब कुछ देगा। मतलब आप प्रोडक्ट ब्राउज कर रहे हो, आप रिव्यूज रीड कर रहे हो, एड टू कार्ट कर रहे हो, यू आर इवन वॉचिंग दिस वर्चुअल एक कोरियर जो कि आपके एड्रेस तक पहुंच रहा है विदाउट चार्जिंग देम एनीथिंग, या फिर कोई भी आइटम नहीं डिलीवर हो रहा है। इट्स जस्ट द होल एक्सपीरियंस ऑफ दिस, इट्स कॉल्ड डोपामाइन साइट्स। इट जस्ट मिरर्स द रियल डिलीवरी एप्स जो करते हैं, सब कुछ सेम होता है। इट्स जस्ट नथिंग इज रियल, जस्ट आपको वो जो एक वो होती है ना कि अरे मेरा तो आने डिलीवरी इज कल होने वाली है, तो एक वो रश आता है कि अरे कल तो पैकेज खोलने को मेरा सामान पहुंच जाए। दे जस्ट एंड इट्स अ ट्रेंड, इट्स अ ट्रेंड।
2: हद है दुनिया खुशी के लिए कहां कहां तक किस किस तरीके के इन्वेंशंस कर सकती है। ओह माय गॉड, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा। वुड यू लाइक योर घाघरा टू बी ब्रेकिंग न्यूज ऑन टेलीविजन अंतरा, जस्ट आस्किंग।
0: डेफिनेटली नॉट बी।

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं
1: one's more.
0: और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
3: 3, 2, 1.
0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है.
4: Musti Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

0: गए।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.
3: Lidij versus Ricky Behl. Hello and good morning.
4: This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
5: Actually, ये तो अब हो गया फिल्म बॉडीज वर्सेस रिकी बहल एक्चुअली में यही चल रहा है गेम खेलते रहते हैं ये लोग वहाँ पे
3: बट रिकी बहल तो जीत गया ना इस टाइम पर एनीवे अभी नो बॉलीवुड नो बॉलीवुड अंतरा जी लेट्स नॉट फॉरगेट द रूल हमारा मस्ती मैडनेस का नो बॉलीवुड अब ऐसा है कि एक आदमी 25 औरतों से शादी करी उसने ठीक है बिकॉज ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑब्वियसली इज अ कॉन मैन 25 औरतों से शादी करके और उनको लूट के भाग जाता था बेसिकली आप सोचिए कि लड़कियां हाँ आज के जमाने में इतनी ज्यादा वो हो गई है कि शादी नहीं हो रही और ये लड़का ऑब्वियसली वाज यू नो जिसे कहते हैं चामर 25-25 औरतें इसको मिल गई शादियां कर रहा है और फिर फ्रॉड करके करोड़ों रुपए उनके लेके भाग जाता है अब आप सोचिए कि वो जितनी भी औरतें देखता था देवर इधर डिवोर्स्ड या वल्नरेबल टाइप की औरतें फेक आइडेंटिटीज यूज करें इमोशनल मैनिपुलेशन सोच कितना बिजी रहता होगा ना ये आदमी पूरे दिन अपने फोन पे हाँ उसकी तो लव लाइफ अलग है
5: इन द मूवी
3: कमाल हाँ बिल्कुल जस्ट लाइक दैट सो अभी क्या हुआ केस इस तरह से आया भारत में बाहर जब 75 ईयर ओल्ड एक औरत ने अप्रोच किया पुलिस को मार्च 2022 में और एक कंप्लेंट थी सो ये कहा कि भाई 45 ईयर ओल्ड अपनी बेटी के लिए शी वाज सीकिंग अ मैच एंड उसने एक आदमी अजय अग्रवाल जिसने शादी करी उसके साथ में उसके बाद कन्विंस किया कि उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया उसके कहने पे उसने ये कहा भाई मैंने नई प्रॉपर्टी खरीद ली तुम्हारे लिए दो स्टोरी का घर ये वो इन्होंने उसको 82 लाख रुपीज हाथ में दिए और उसके बाद ऑफ कोर्स पता लगा कि वो किसी की शादी अटेंड करने के चक्कर में पैसे लेके और सारा कुछ लेके गायब हो गया तो दिस फर्स्ट वाज अनकवर्ड देन और उसके बाद ऑफ कोर्स इस टाइम पर 25 शादियां करके अब पकड़ा गया कैन यू बिलीव इट
5: गर्ल्स प्यार अंधा होता है इतना भी अंधा नहीं होता है और नहीं होना चाहिए जब पता होता है कि ये सारी चीजें बकवास है
3: सही बात और मैं कहूंगी तुम औरतों को कि तुम्हें आदमियों की कोई जरूरत नहीं है अगर एक ने डिवोर्स हो गया तुम्हारा एक बार जरूरी थोड़े कि तुम एक और के पीछे पीछे भागो इट्स ओके लाइफ कैन ऑल्सो बी जस्ट विथ योरसेल्फ
5: अग्री कंप्लीटली
6: जरा इतर गिरा
3: इतर गिराने के लिए हम आ चुके हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती मैडनेस गुड मॉर्निंग

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: अच्छा जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जीने के हैं चार दिन, हो बाकी है बेकार दिन।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: हाँ जी हाँ जी, जीने के है चार दिन, इसीलिए जितना जो है दिमाग है बस उतना ही यूज करे, उसको ज्यादा यूज नहीं करे। और अगर नहीं है और ये बात आपको पता है तो कुछ भी पोस्ट करने से पहले उसको वेरीफाई करा ले पहले।
0: बिल्कुल। पर अंतरा, जीने के चार दिन है और फ्राइडे होता है पांचवा दिन, तो फिर आज का दिन
2: हम,
0: क्या है?
2: हम फ्राइडे इज द मोक्ष प्राप्ति का दिन। फ्राइडे को हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है।
0: चार दिन ना, सिर्फ और सिर्फ महान लोग ये शो होस्ट कर सकते हैं, और उनसे भी महान लोग हैं जो सुन सकते हैं मसी मैडनेस पर। अगली खबर।
2: हाँ, तो मैं कह रही थी कि कभी कभी क्या होता है कि आपको पता होता है, और अगर आपको नहीं पता होता है तो आपको वेरीफाई करके चीजें पोस्ट करनी चाहिए। तो
0: जी,
2: ये जो हमारी बहन है, हमारी बहन जो है वो एक रेस्टोरेंट गई। अब रेस्टोरेंट वो गई, उन्होंने एक ब्रिस्केट करके ऑर्डर किया। अब क्या है, यू नो दोस पीपल हु आर लाइक, हमेशा ही उनका झंडा ऑन रहता है कि इफ आई डोंट लाइक इट आई विल मेक श्योर आई विल गिव देम 1 star 2 star एंड आई लीव अ रिव्यू आल्सो इन राइटिंग एंड एवरीथिंग। आप तो कर ही सकते हो अगर आपको लगता है, लेकिन कभी कभी ना वेरीफाई करा लेना चाहिए। तो इन्होंने लिखा, 2 star का रिव्यू दिया, और रिव्यू में उन्होंने लिख भी दिया कि यू विल नॉट बिलीव आई फाउंड अ लीफ इन माय ब्रिस्केट। ठीक है, आई एट हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सबने कहा कि ब्रिस्केट बेस्ट था, बट आई फाउंड अ लीफ एंड आई कैन नॉट मेक दिस अप, और फोटो और डाल दी उसकी। है ना, रेस्टोरेंट ने भी उसको वापस उसको जवाब दिया कि वी आर ग्लैड दैट यू एंजॉयड द ब्रिस्केट, आई एम गेसिंग यू हैव नेवर सीन बे लीव्स इन योर फूड बिफोर, सो इफ यू सी देम इन फ्यूचर यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट दिस इज अ साइन दैट समवन हैज स्पेंट टाइम एंड एफर्ट इन मेकिंग योर फूड फ्रॉम स्क्रैच।
0: क्या जवाब, मजा आया।
2: बंदी बोला रहा था कि उन्हें रैंडम पत्ता जो है उसको दिख गया है और उसको कंप्लेन करना चाहिए। पत्ता तो था लेकिन वो बेलीफ निकला।
0: नो योर फूड वेल, और उससे भी बड़ी बात, शिकायतें लगाने से पहले थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो। मतलब सीरियसली, हर चीज वायरल नहीं होती है, अगर होती है तो सही रीजंस की वजह से नहीं होती है, ध्यान रखो।
2: एग्जैक्टली।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email WhatsApp

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर, प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट। 3, 2, 1।
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: अंतरा सोच, तू एक ही एयरलाइन हमेशा फ्लाई करती है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा कि तुझे पता लगता है कि उस एयरलाइन में एक पायलट है जो 15 साल से फेक लाइसेंस पे चला रहा है फ्लाइट, तो तुझे कैसी फीलिंग होगी? तू सोच उस फीलिंग के बारे में।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो,
2: दिस इज मस्ती मैडनेस। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि देर आर टाइम्स व्हेन आई यूजुअली यूज दिस सेंटेंस व्हिच इज कॉल्ड इग्नोरेंस इज ब्लिस, में मैं रहना चाहूंगी। मैं वैसे ही अच्छी हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं, एंड एक्चुअली में होता है लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पता होती है, एंड इट इज अ ब्लिस।
0: एग्जैक्टली,
2: यू आर इन अ वेरी सेफ स्पेस।
0: टोटली, इग्नोरेंस इज ब्लिस, इसीलिए कहा जाता है, बड़े बड़े लोग कहकर गए। अब क्या है, एयर कैनेडा, मेरे मुंह से क्यों गलत एयरलाइन की आवाज क्यों निकल रही थी ये नाम क्यों निकल रहा था, खैर सोचिए, जरा सोचिए। लेकिन मैं वापस जाऊंगी और सही सही बात कहूंगी कि एयर कैनेडा के कैप्टन जेफरी वॉल, फिलहाल तो फॉर्मर कैप्टन है वो, उनको अरेस्ट किया गया अभी 1 जून 2026 को, जब इन्वेस्टिगेटर्स ने ये पता लगाया कि ये जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट चला रहे हैं ये 17 सालों से 17 ईयर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने 900 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलाई हैं 2009 से 2025 के बीच में बिफोर रिटायरिंग एंड ऑफ कोर्स बीइंग कॉट इन अ रूटीन डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। अब देखिए, रिटायर हो गया बंदा, पूरी जिंदगी चला चला के एरोप्लेन, ठीक है, गलत लाइसेंस पे, फेक लाइसेंस पे, मतलब ही हैड अ वैलिड कमर्शियल लाइसेंस एंड हैड सेफली पास्ड ऑल रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी इवैल्यूएशंस। लेकिन जो स्पेसिफिक एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होता है जो कि कैप्टन को सर्व करने के लिए एज अ लार्ज पैसेंजर जेट्स पर, वो उनके पास नहीं था, और वो ना होते हुए भी ही वेंट ऑन एंड ऑन। अब देखिए, उनको $5,000 का फ्रॉड फोर्जरी ये वो का जरूर लगेगा, लेकिन
2: दिस आल्सो रेजेस सच अ बिग क्वेश्चन ऑन कि जिन्होंने इनको रिपोर्ट किया है कि भाई तुम पहले क्या कर रहे थे।
0: बिल्कुल, ये कौन सी पाठशाला थी? मस्ती की पाठशाला
2: लग ही रहा है, बिकॉज इतने सालों बाद तुमने फिगर आउट किया कि अरे इसके पास तो लाइसेंस हो।
0: हाँ।
2: वो बंदा इतना कर चुका है ऑलरेडी जो उसने करना था,
0: बिंदास रिटायर हो गया था वो तो बाद में अब पकड़ा गया, नहीं तो क्या यार, अब तो रिटायर भी हो गया, अब क्या पकड़ना, छोड़ो परे।

0: आवाज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: दूसरे घंटे में इन यानी कि अंदर जाते हुए यहाँ पे मैं अंतरा साथ में रेणुका, यह मस्ती मादस हैप्पी फ्राइडे।
1: ये कोई सीधी शराफत की बात नहीं थी, इन जाने की अंदर जाते हुए। अंदर का क्या मतलब है, दूसरे घंटे में पहुंच गए ना, अंदर बाहर क्या लगाया हुआ है।
2: This is Masti Madness on Radio Masti.
1: गलत बातें जैसे कि अर्नब गोस्वामी का कहना है कि ये गंदे वाले लोग जो मीडिया में है आजकल, गंदी बातें करने वाले,
0: गंदे।
1: All right, हाँ जी, क्या बताइए।
0: बच्ची शो ही उसी के बारे में है, अब ऐसी बातें करनी ही है तो उसी फॉर्म में एकदम हम एंट्री लेंगे। आइए शीला की बात करते हैं।
1: जी,
0: शीला ने काफी काफी गदर मचाया हुआ है। सो हमारी शीला जो है ह्यूस्टन टेक्सास में की रहने वाली है। तो क्या था, शीला जो है अपने पति लैरी को बड़े दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी। बड़ा सस्पिशियस वो एक्ट कर रहा था कि भाई लेट नाइट टेक्स्ट छुप छुप के कर रहा है, रैंडम ही काम करने के लिए बाहर चला जा रहा है, यू नो फोन पे प्राइवेसी स्क्रीन लगा ली है, दिखाना नहीं चाहता है कि क्या कर रहा है। सो शी वाज, एक होता है ना वो बंदी का एक हंच होता है, वो कहता है कि कुछ तो बेटा गड़बड़, तो डायरी तो कुछ तो कर रहा है जो तुझे नहीं करना चाहिए। और वो फिर उसने फिगर आउट कर दिया, तो लैरी ऑफ कोर्स वो चीटिंग कर रहा है इसके साथ, इसके पीठ पीछे। अब शीला न चिल्लाई, शीला ने बैग भी पैक नहीं किए कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ या तू इस घर से निकल जा। उसने सिर्फ रात तक का इंतजार किया।
1: अच्छा,
0: रात के अराउंड मीठा 2 बजे, ठीक है, जब लैरी एकदम गहरी नींद में चला गया था, तो शीला गराज गई, उसने उठाया गोरिल्ला ग्लू। फॉर दोस हु डोंट नो, गोरिल्ला ग्लू इज लाइक फेविक्विक का दादाजी, लाइक इट्स लाइक काम तमाम टाइप हो जाता है उसमें चिपकने पर। एंड ही शी डिसाइडेड कि अब तो मैं इसको अपनी तरीके से लेसन पार्ट जो है वो पढ़ाऊंगी। लैरी के बट चीक्स पे गोरिल्ला ग्लू लगा के चिपका दिया शीला ने रात को। लैरी जब सुबह उठा तो फिर अब आप सोच ही सकते हो,
1: हाँ, मतलब
0: क्या क्या हालातों में वो उठा होगा या उठ के खड़ा हो भी पाया होगा कि नहीं, आई डोंट नो।
1: बिल्कुल, लैरी के पास अब एक बम था 2 की जगह,
0: yes,
1: क्योंकि बीच का तो गायब हो गया था, दे बिकेम वे वन। ऑसम,
0: मतलब एक हो गए एक।
1: शीला की जवानी कमिंग अप, शीला का दिमाग और शीला की जवानी, क्या बात है भाई, मतलब मजा ही आ गया। तो फिर लैरी सुधर तो गया होगा, अंतरा तुम्हें क्या लगता है।
0: लैरी तो अभी फिलहाल ऐसा इंटरनेट बात कर रही है कि कोई कह रहा है कि लैरी के साथ ऐसा बहुत ही बुरा हुआ, लोग कह रहे हैं कि लैरी इनवाइटेड कि उसके साथ कुछ ऐसा बुरा हो, उसको पहले ऐसा करना नहीं चाहिए था। एंड आई थिंक द मोस्ट डेंजरस वुमेन आर हु डू नॉट रिएक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब उनको कुछ पता होता है, जो एकदम खामोश रहती है, मतलब की तूफान।
1: पर लैरी उस दिन पॉटी कैसे गया होगा, दैट्स माय अदर।
0: मैं भी वही सोच रही थी, लाइक
3: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: And on Radio Masti 24/7, भाई साहब, जिंदगी में एक बात मुझे हमेशा से याद रहती है कि जब से सबसे ज्यादा शरारती बच्चे को हमेशा क्लास का मॉनिटर बना दो तो क्लास सुधर जाती थी. ऑल्सो अगर आप इंसानों को ऑब्जर्व करने को बोले अपने ही बिहेवियर को, तो वो भी कई हद तक सुधर जाते हैं, इज व्हाट फिलोसफी एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन साइकोलॉजी सेज. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. मस्ती मैटर,
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस.
3: हाँ जी, आजकल हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ही सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं. मैं रेणुका नूपुर बहुत ही ज्यादा उसमें गुस्से हुए.
1: डियर मस्ती, दिल से, क्योंकि कभी कभी रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको बाहर की दुनिया से बहुत बेहतर समझ लेता है, और वही अनजाना इंसान फ्राइडे सुबह ऐसा बदल जाता है कि किसी को नहीं समझना चाहता.
3: पर्सनालिटी परिवर्तन हो जाता है उसका,
1: बिल्कुल
3: अलग ही उसपे ढाले पे चला जाता है.
1: मुझे लगता है कि सारे के सारे जॉक्स को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात, मतलब लोग कहेंगे यू पीपल आर वेरी डिफरेंट कंपेयर टू ट्यूजडे, यू गाइज आर डेमन्स एंड विचेस ऑन फ्राइडे मॉर्निंग्स. एनीवे, रोहतक लेके जा रही हूं मैं आपको इस टाइम पर, जहां पर लोग दीवारों पर, आप जानते हैं कि लोग सुसु करने के लिए, लोग नहीं आदमी सुसु करने के लिए किसी भी दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं भारतवर्ष में, हमने ये देखा है. ठीक है, नो मैटर आप कितने स्लोगन वहां लिख ले, अच्छे वाले लिख ले, बेइज्जती वाले लिख ले, कुछ भी आप लिख ले दीवारों पर, लेकिन
3: मुझे,
1: लोग
3: मुझे याद है,
1: हाँ,
3: ट्रेन जर्नीज में रेणुका, उसमें वो मैं बताऊं क्या लिखा होता है?
1: नहीं, देखो समथिंग कर रहा है, मैं नहीं बोलना चाह रही थी ये वाला. आई नो हम सब ने पढ़ा है, बट ऑब्वियसली इट डिड नॉट वर्क, राइट, बिकॉज पीपल आर स्टिल डूइंग व्हाट दे डूइंग. तो रोहतक में

0: क्या किया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कि उन्होंने एक सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है बिहेवियरल साइकोलॉजी देखते हुए, ठीक है, जहां जहां सबसे ज्यादा जो प्रचलित जगहें हैं वहां पर उन्होंने या तो कैमरे लगा दिए हैं सीसीटीवी या फिर उनके जो फुल दीवारों पर शीशे लगा दिए हैं, ठीक है। उससे क्या है कि जब बंदा करने के लिए जाता है वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है और काफी लोग डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन हाँ ढीठ लोग हैं जो अभी भी लगे हुए हैं। तो बेसिकली भाई वहां के लोग कहते हैं कि इससे थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, स्पेशली वो शीला येट अगेन बाईपास चौक जो है वहां पर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी लोग लगे हुए हैं। धीरे धीरे सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी शायद। तुम्हें लगता आएगी?
1: उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, बट मुझे लगता नहीं है। शीशा इज नॉट गोइंग टू वर्क एट दैट मच, मे बी इक्का दुक्का अगर हो जाए हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा शायद कैमरा लगाओ तो शायद हो जाए, बिकॉज देन वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना कि हमें अपना यू नो, लेकिन उससे भी मेरे को ज्यादा उम्मीद नहीं है,
0: मुझे नहीं लगता।
1: चलो अगर लोगों को लगता है एटलीस्ट, चलो एफर्ट के पॉइंट दे,
0: बस
1: कुछ सोच तो रहे,
0: स्टेप्स के पॉइंट दे दो इसको। लेकिन अगली चीज ये भी है कि कुछ लोग तो सामने एक हाथ से अपना सामान पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से अपनी कंघी उंगी कर लेंगे, वहां पर बाल बाल ठीक कर लेंगे कि चलो शीशा तो लगाया सड़क पे।

सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: भाई मस्ती मैडनेस में आप सभी का स्वागत है. और जो है खबर मैं बाद में दूंगी, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट के बारे में अभी बात करते हैं.
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बातें चल रही हैं जिंदगी में.
3: This is Masti Madness on Radio Masti.
2: Masti Madness Radio Masti 24/7 पर अंतराजी बहुत ही ज्यादा इस समय संजीदा होते हुए.
1: जी जी जी, मैं इसलिए संजीदा हो रही हूँ क्योंकि मैं हर बार कोई सवाल पूछती हूँ ना रेणु का, फट से ऐसे ऐसे, ऐसे जवाब आते मेरे पास ऐसे. मतलब मैंने अभी थोड़े दिन पहले पूछा था कि हमने उसका न्यूज भी डाला था कि सबसे लॉन्ग रनिंग प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी इंडिया. फट फट फट लोग जवाब आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं. मैंने कहा कि देखो स्मार्ट तो तुम लोग सब हो,
2: बिल्कुल
1: टाइम टू फ्लेक्स इट. Lion City Challenge. It is here for you.
2: बिल्कुल बिल्कुल. So Lion City Challenge, देखो जी ये अंताक्षरी हो गई, मजाक मजूक हो गया, आपने हाल ही में आम जीत लिए, वाउचर्स जीत लिए, बड़ा कुछ जीत लिया, ठीक है ना. इट इज नाउ टाइम टू गेट द रियल विन यार. रियल विनिंग होती है जब रियल गेम शो खेलो, और वही है ये द लायन सिटी चैलेंज. आप लोगों ने अप्लाई किया या नहीं किया अभी तक? क्यों अंतरा आ गया उनके एप्लीकेशन?
1: काफी एप्लीकेशंस आए हैं. जो पहली बार ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सबसे पहला कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा. एंड दैट इज नथिंग वेरी बिग, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू टेक्स्ट LION लायन एंड सेंड इट टू अस 9151896 3 पर. वंस यू डू दैट, ऑफ कोर्स उसके बाद वाले स्टेप्स आप खुद ब खुद पता लगने लग जाएंगे, जैसे बाकी सभी को पता लग.
2: बिल्कुल. सो पहला फेज में आपको दो सवाल आएंगे व्हाट्सएप से ही, आपको जवाब देने होंगे. और दूसरे फेज में अगर आपने सही जवाब दे दिया और आप पहुंच गए क्वालिफिकेशन राउंड के बाद, तो आपको आएगा एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें कि आपके बारे में, आपके जो बडीज होंगे जिसको फोन अ फ्रेंड कहते हैं बड़े कुछ कुछ गेम्स में, उस तरह की बात होगी. एंड ऑफ कोर्स एक छोटा सा आपका रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन फी है वो भी होगी अपार्ट फ्रॉम योर कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फी क्यों होगी? क्योंकि भैया ऐसा है कि अगर आपसे अगर हम वो फी भी नहीं लेंगे तो आप तो पहुंचेंगे भी नहीं उस दिन खेलने के लिए, क्योंकि हमारे तो कैमरा वगैरह सब कुछ सेटअप होंगे और आप निकल जाएंगे पतली गली से. तो इसीलिए वो भी जरूरी है. कोई ज्यादा फीस नहीं है ये सब चीजों के लिए. यू कैन राइट टू अस राइट अवे. व्हाट्सएप कीजिए LION लॉयन
1: लायन
2: लॉयन की बोला हमने
1: क्योंकि मस्ती मैडनेस है ना, घुस गया फीलिंग अलग लॉयन से.
4: सिंगापुर प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट. 3 2 1
5: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
6: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम. जी हाँ बिल्कुल, पंडित पांडे जी यहाँ पर सीटियां बजा रहे हैं और अंतरा जी यहाँ कह रही हैं मेरी बारी है, मेरी खबर है.
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती मैडनेस.
2: इतनी फनी फनी लगी मुझे ये खबर क्योंकि मेरा फर्स्ट हैंड विटनेस एक बार किसी के यहाँ पे हो चुका है ऐसे ही एक सिचुएशन में. तो हम लोग अपने एक दोस्त के घर पे गए हुए थे तो उसने कहा तो उस टाइम पे हम लोग वो भी बैचलर और हम लोग सब उसके घर में पहुंचे. उसने कहा कि ठीक है गाने वाले चला दे, लैपटॉप जो है स्पीकर से वो कनेक्टेड है, जाके वो कर दे. अब उसने लॉक कर रखा था तो मेरे दूसरे दोस्त ने उसको बोला कि अच्छा बता इसका पासवर्ड क्या है, अनलॉक करके फिर मैं चलाता हूँ. उसने अनलॉक किया और यहाँ पे स्पीकर से अलग अलग तरह की आवाजें आनी शुरू हो गई ऑलरेडी. तो अपेरेंटली हमारे दोस्त जो है वो हमारे आने से पहले अपने कुछ अच्छा उस तरह का ट्रिपल एक्स टाइप का कुछ देख रहे थे. सो वो ऑन करते ही स्पीकर में एंड उसके बाद ही गॉट एम्बैरस्ड बिकॉज इट वाज आउट एंड लाउड एंड एवरीथिंग. सो ये दादाजी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ. तो ये इनकी पूरी फैमिली फीफा वर्ल्ड कप देखने पहुंची कि सब साथ में बैठ के देखेंगे. अब क्या हुआ, दादाजी ने अपना टीवी ऑन किया एंड ऑन करते ही सामने जो है दादाजी के सेव्ड चैनल्स जो है डिस्प्ले आ गए. सेव्ड चैनल्स में सारे के सारे जो चैनल्स थे वो वही वाले जो चैनल्स थे अडल्ट वाले जो दादाजी देख रहे थे.
0: पोर्न.
2: और उसमें हाँ, और उसमें नीचे हेडिंग्स भी है. सो ऑब्वियसली वी नो द प्रेफरेंसेस आल्सो, दादाजी किस तरह के वीडियोस जो है देखना पसंद करते हैं. एंड पुअर दादाजी नाउ बिकॉज वो पैनिक मोड में है, अब उनसे वो स्क्रीन हट भी नहीं रहा है बिकॉज ही इज पैनिकिंग हाउ टू बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रेन उनके खुद के बच्चे उनकी बेटी बता रही है वीडियो की डैड इज पैनिकिंग द हेल आउट राइट नाउ.
0: भाई इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी ये जो मेमोरी फंक्शन है ना तुम्हारे फोन में है या ये जो ब्राउजर की सेविंग्स कर लेता ना, भाई साहब दिस कैन रियली एंड अप इन ट्रबल. क्योंकि पता लगे एक पड़ोसी सडनली आया, सुनो मुझे आपके टीवी पे कुछ देख रहा. अच्छा इवन हमारे घर पे कभी कोई आ जाए ना और बोले चलो यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, फ्रेंड्स बैठे हैं, तो देखो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे ऐसे काम नहीं करने. ना ना ना ना ना.
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: दे आर फ्रेश, दे आर

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20, पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009।

0: हाँ तो भाई अंतरा जी, जैसे जैसे ये घंटा खत्म हो रहा है मुझे वैसे वैसे कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं अपनी जिंदगी की। मैंने कहा ठीक है, अजीबो गरीब खबरें दुनिया भर की तो मिलती रहती हैं, क्यों ना हम अपनी जिंदगी की एक आध अजीबो गरीब खबर भी शेयर करें।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, करना ही चाहिए, हमारी जिंदगी कम केओटिक है।
0: कम हैपनिंग है। अच्छा, बैंकॉक में, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बंदा स्कैम हो जाता है सड़क पे, ठीक है। तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों के दोनों अकेले बड़ा गए थे, सोलो ट्रिप, मतलब हम दोनों सिर्फ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा हमारे साथ। टैक्सी से निकले पैलेस के सामने, तो एक पुलिस यूनिफॉर्म में एक आदमी था, उसने हमें बोला कि अरे आप पैलेस देखने आए हैं? कहा हाँ जी। कहते बंद है, बंद है लंच टाइम के लिए, आप तब तक ये इस साइड पे लेक है वहां चले जाओ। कहा ठीक है। तो हम दोनों उधर चले गए, उसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, देयर वाज नो रीजन फॉर अस नॉट टू बिलीव हिम, राइट? सो वी जस्ट वेंट दैट साइड, एंड वहां पे किसी ने बोला ओ बोटिंग टूर शुरू होने वाला है, तो आपकी बोट निकलने वाली है, निकलने वाली है। हमने कहा ठीक है चलो एक बोटिंग टूर कर लेते हैं आधे घंटे का, है ना। तो हमने वो एक कोने में एक बोट पे ले गया, निकलने क्या वाली है, उस पे कोई और था ही नहीं, तो निकलने क्यों वाली है वो, ठीक है। लेकिन हम दोनों उस पे बैठ गए वो हमारी पहली गलती, ठीक है। कोई हमारा कोई ऐसा सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई लाइफ सेविंग इक्विपमेंट नहीं, वो एक बोट, और वो कहता है मैं तुम्हें दिखा के रहता हूँ वो फ्लोटिंग मार्केट। ठीक है दिखा भाई। अच्छा, वो हमें वो नैया में ले गया। हम पहले तो बड़े एक्साइटेड दोनों की, देखो हमने प्राइवेट हमारी अपनी बोट है, ठीक है, और उसमें हम गाने गाने लगे, दो की है ये जिंदगानी कभी है, हाँ,
2: इग्नोरेंस इज ब्लिस वाला हालात चल रहा है,
0: प्रेंद लो। हमने भी अपनी बोट कभी फ्रेंच बोले कभी कुछ बोले। फिर क्या हुआ, आगे गए, वीराना होता चला जा रहा है पानी में, ठीक है। और वो पानी में सडनली उसने कहा, मैंने कहा कहाँ है फ्लोटिंग मार्केट? अच्छा, अब उसको अंग्रेजी भी नहीं आती, कहाँ है फ्लोटिंग मार्केट? तो वो सामने से एक ऐसी ही वीरानी बोट में एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ आया, उसके पास चार कोक थे, दो बियर था, दो कुछ था, ठीक है। तो वो कहता है ये है फ्लोटिंग मार्केट। मैंने कहा ये है फ्लोटिंग मार्केट? अच्छा, तो कहता है ड्राइवर के लिए कुछ लो। हमने ड्राइवर को कहा तू कुछ लेगा? हाँ। तो उसने बियर ले ली और हमने एक कोक खरीदा और हम आगे चले गए। फिर भी हमें कुछ और नहीं दिखा, वो हमें दिखा रहा है दूर, देखो एक छिपकली थी, ठीक है, वो देख लिया हमने। फिर हमने उसको बोला अब तो वापस लेके जा, क्योंकि हम डर गए, ठीक है, हमने कहा डर गए हम। तो वो हमें वापस ना लेके जाए, फिर हमने अपने गूगल ट्रांसलेटर पे देखा कि हमें क्या बोलना है उसको, फिर हम उसको उसी एक्सेंट में बोल रहे हैं वापस खा खा, वापस लेके जा जा, वो नहीं समझ रहा। बहुत देर घूमने के बाद अकेले हम किसी तरीके से वापस लैंड पे पहुंचे, और मॉरल ऑफ द स्टोरी, ज्यादा एडवेंचरस मत बनो, और पुलिस की यूनिफॉर्म में भी अगर कोई तुम्हें कुछ कहे करने के लिए, मत करो अपने आप देखो, क्योंकि हम फिर उसके बाद पैलेस में गए, उनका तो लंच टाइम था ही नहीं।
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.

0: भाई क्या क्या चीजें जो है, आइए अतरंगी चीजों में एक और चीज ऐड कर देते हैं आज के मार्केट में जो अवेलेबल है।
1: क्या है वो?
2: This is Masti Madness on Radio
1: Masti Madness, Radio Masti 24/7। जी हाँ, 19 तारीख हो चुकी है आज जून के महीने की, और मुझे लग रहा है कि बस 11 दिन में जून भी खत्म होने की पूरी संभावना है।
0: संभावना है, okay if you say so। बट भाई एक हमारा वो ब्रांड है बैलेंसियागा जो कि अलग अलग तरह की चीजें निकालता रहता है। मैं आई स्टिल कैन नॉट गेट रैप माय हेड अराउंड इट कि वो ऐसा क्यों कर रहा है,
1: क्यों कर रहा है।
0: आई मीन कौन ही खरीद रहा है ऐसी ऐसी सारी चीजें। बट देन वन ऑफ माय वेरी फेवरेट एक्चुअली परफ्यूम ब्रांड्स डिप्टिक करके जो है, भाई उन्होंने निकाला एक प्रोडक्ट जिसको देख के तो मेरे तो होश ही उड़ गए।
1: क्या?
0: मैंने कहा ये क्या, एंड दे आर कॉलिंग इट लेमन ग्रास इंसेंस।
1: अच्छा,
0: ओके, या इट्स एन इंसेंस कॉइल, ओके, इट्स अ सेंटेड स्पाइरल रेणुका। ठीक है, मैं अगर आपको इसके फोटो का, मैं उनको ज्यादा डिस्क्रिप्शन भी नहीं बताने की जरूरत है, मैं कहना चाहती हूँ कछुआ छाप अगरबत्ती बोलते ही जो इमेज आपके दिमाग में आई है
1: बस वही
0: ये है वो डिप्टी का बहुत ही महंगा सेंटेड स्पाइरल।
1: ओह कम ऑन गाइस। तो आगे क्या होगा इससे? कितने करोड़ों में लेना पड़ेगा ये मच्छर भगाने की चीज?
0: नहीं, ये अब मच्छर भगाएगा? देखो पैसे तो भगाएगा, सबसे पहले पैसे जाएंगे
1: पक्का
0: बहुत सारे क्योंकि ये इतना महंगा जरूर है। अब वही है कि अमीर लोग भी कछुआ छाप अगरबत्ती इस फॉर्म में, इट्स जस्ट द ब्रांड,
1: तो
0: बेसिकली ये है कि कुछ भी बेच सकते हो, ब्रांड का नाम डाल दो बस।
1: सही बात है, इट्स ऑल अबाउट द मार्केटिंग। अब तुम देखो अमीर लोग दे डोंट लाइक टू से कि हमें कहीं पर छाले हो गए हैं, हमें फिंसियां हो गई हैं which we never say by the way, but you know they like to say it's ulcers and these are boils, so usi tarike se kachua chhap nahi khareedenge wo, they will buy the lemongrass incense। cheese wahi hai।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: देखिए भाई साहब, अगर आप हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर और आपके ऑटो में बैठ जाता है एक सीईओ, तो आपकी किस्मत कई तरीकों से चमक सकती है। बाय द वे,
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
4: दिस इज वाह वाह, कैसे कैसे तुम बताओ, हमें भी जानना है।
2: तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम ये खबर सुनते ही ऑटो ड्राइवर बन जाओगे जाकर। है भाई, ऐसी भी क्या बात हो गई।
5: प्लान भी हमेशा ऑन रखना चाहिए, सी डी में भी ऑन रखना चाहिए।
2: ये सही है, आज के जमाने में ए बी सी डी जी तक जाता है। ऑलराइट, सो एक मुंबई का ऑटो ड्राइवर, ठीक है, अब वो जैसे ही ढूंढ रहा था, सवारी ढूंढ रहा था, तो सवारी आई एक सीईओ की, और वो सीईओ क्योंकि एक इंटरनेशनल क्लाइंट से मिलने जा रहा था, उसे भैया जल्दी चलो, ठीक है, उसने पहुंचा दिया सही जगह से, और वो जो गूगल पे होता है उससे पेमेंट हुई, ठीक है। आजकल तो आप जानते हैं कि जो भारत है, विकसित भारत, उसमें हम हर इंसान ई पे कर रहा है, राइट। सो इसने गूगल पे से करी, अब 156 रुपीज वॉज द फेयर एंड ही पेड 15682, 15,000 जी, 682 रुपीज। अब क्या हुआ, उस बंदे के अकाउंट में पहुंच गए अचानक से, राइट, एंड ही चेक्ड एंड ही सेज अरे अरे सर, लेकिन वो सर तो भागे क्योंकि उनकी थी मीटिंग। नाउ द गाय कुड हैव इजीली लेफ्ट, राइट, एंड गॉन, लेकिन वो वेट करता रहा। और वो कुछ एक या दो घंटे वेट करने के बाद में जैसे वो आदमी बाहर आया, दिस गाय टोल्ड हिम कि आपने ये किया है, एंड देन ऑफ कोर्स द मनी वाज पेड बैक, द एक्सेस अमाउंट, उसने कहा ओ माय गॉड। लेकिन उस बंदे ने उसको बोला कि थोड़े और पैसे ले ले, प्लीज ऐसे मत कर, यू नो दैट यू वेटेड। ही सेज नहीं सर, अभी तो हम दोनों के लिए ही टाइम शुरू हुआ है, दिन शुरू हुआ है, बस आप ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। उफ, ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। अंतरा, हैव यू मेट एनीबॉडी लाइक दैट?
5: इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, बीच बीच में ऐसा लगता है भगवान जी जब थोड़ा सा वैसे हो जाते हैं तो कहते हैं चलो ऐसे ऐसे लोगों से भी मिल लिया करो, तुम्हारे उम्मीद खत्म नहीं होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के ऊपर से विश्वास नहीं चला जाना चाहिए।
2: बिल्कुल ऐसे। खैर, उसने बाद में 500 उसको फिर से भेज दिए थैंक यू करते हुए, बट वाओ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: CEO का जवाब एक और CEO से दिया जाएगा, आओ बात करें।
3: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है
4: गैस्ट्रोनॉमिक खबरों के लिए बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप। ये रेडियो मस्ती 24/7 और आप सोच रहे हैं यार ये सुबह से कोई न्यूज नहीं बता रही, कोई बॉलीवुड की बातें नहीं कर रही, तो ठीक है, आप बिल्कुल बिल्कुल सही शो पर आए हैं। यहाँ ये दोनों बातें नहीं होती, यहाँ सिर्फ और सिर्फ विचित्र कहानियां शेयर की जाती हैं। क्यों अंतरा जी?
5: जी हाँ, और आज की डेट में ये विचित्र ही लगना चाहिए। एक और बड़ा ही कमाल के सीईओ, ठीक है, नॉर्वे का सीईओ है, ठीक है। तो हमारा ये जो बंदा जिसने ये पोस्ट डाला हुआ था, कहते 15 साल पहले मैं जब नॉर्वे मूव किया था, मैं अपना पूरा इंडियन वर्क एथिक लेके मूव किया था कि भाई मेरे को, मैं वीकेंड में भी तेरे लिए काम करूंगा, मैं लंच स्किप करके तेरे लिए काम करूंगा, लेट लेट इवनिंग रात में काम करूंगा, मतलब अगर मेरी तबीयत खराब है मैं फिर भी तेरे लिए काम करूंगा, ठीक है। बट इनिशियल डेज में उसने देखा कि एक दिन मेरे बॉस ने मेरे को बुलाया और मुझे लगा कि ये सब करने के बाद मेरे को काफी मतलब तारीफ मिलने वाली है कि गुड यार, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब ओवर हियर। बट बॉस ने एक अलग ही कहानी सामने रखी, कहते यू रिप्लाइड टू माय ईमेल ऑन अ सैटरडे, यू कैंसल्ड योर वेकेशन टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट और तुमने मुझे वो बताया नहीं। आई नो यू मेंट वेल बट दैट इज नॉट ओके। वेकेशन जो है तुम्हारा मैंडेटोरी है, यू नेवर स्किप इट। अगर तुम्हारे जूनियर्स तुम्हें देख रहे हैं, दे विल थिंक दैट दिस इज व्हाट डेडिकेशन मींस एंड दिस इज नॉट व्हाट आई वांट देम टू लर्न। एंड ही सेड दैट आई गॉट स्कोल्डिंग फॉर वर्किंग टू मच एंड मैं कंफ्यूज बैठा रहा उसके सामने कि अगर ये मैं इंडिया में करता तो मुझे शायद बहुत ही ज्यादा ओवरली तारीफ मिलती। बट द सेम थिंग हियर, इट इज अ प्रॉब्लम।
4: इसीलिए तो गोलमाल वाला गाना चला है, यहाँ पर सब गोलमाल है। क्योंकि हम जो सोचते हैं, खैर हम गलत सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस एंड आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक, हम जो इंडियंस हैं वो समाज सोचते हैं ज्यादा लंबे देर तक ऑफिस में बैठने का मतलब हम ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, मैं तो ये सोचती हूँ कि जब मैं घर में होती हूँ तो मैं ज्यादा काम करती हूँ, यू नो, बिकॉज सीरियसली दैट्स व्हेन यू जस्ट डोंट गेट अप टू शावर, यू डोंट गेट अप टू ईट, यू डू एवरीथिंग वहीं पर बैठे बैठे तुम और करते रहते हो, और देन यू बिफोर यू रियलाइज 15 घंटे हो जाते हैं, यू नो, ऑफिस जाते हो तो कभी चाय के लिए गए, कभी किसी से बात करी,
5: इट्स ब्रेक्स आते रहते हैं बीच-बीच में।
4: सो बदलो, देश बदलेगा।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: बेटा ऐसा है कि कभी कभी बड़े बूढ़े जो कहें ना, वो बात देर से समझ आती है पर आती जरूर है।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: That is right, मस्ती मानस, आप सुन रहे हो रेणुका और अंतरा के साथ। एंड ये बड़े बूढ़ों वाली बात क्या होती है ना कि सडन रियलाइजेशन, इट्स लाइक ऊपर से आवाज आ रही हो, जैसे वो बोलता नहीं तो मैं समय हूँ कि ओ ये तो बोला था, ये तक क्यों नहीं समझ में आया था।
0: एक्चुअली देखा है ना, ओवर टाइम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वी रियलाइज कि हमारे मम्मी डैडी जो बोलते थे विच यूज टू इरिटेट द हेल आउट ऑफ अस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? नाउ सडनली इट हैज स्टार्टेड मेकिंग सेंस व्हेन यू रिलेट टू लाइफ, राइट? सो अब वन ऑफ द थिंग्स दैट बड़े बूढ़े हमेशा कह के गए हैं वो ये है कि भाई साहब, जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, चाहे तुम्हारे बच्चे जितना भी तुम्हें प्यार करते हो, तुम उनको तब तक मत दो जब तक तुम जिंदा हो, राइट? आई मीन डोंट गिव एवरीथिंग टू देम। यस,
2: अग्री।
0: अब ये आंटी जी, 89 ईयर ओल्ड आंटी जी, इन्होंने अपने गिफ्ट डीड में अपने ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन को काफी कुछ दे दिया था, ठीक है? एंड वो लोग बड़ी ऐशे करके दे स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ हर। अब आंटी जी ने क्या कहा, 89 है बट शी सेड मैं नहीं छोड़ूंगी। ऑल राइट भाई, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन एंड केयर फॉर सीनियर सिटीजन सिर्फ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इट इज एक्चुअली अ लीगल इन्फोर्सिबल कंडीशन, क्योंकि स्पेशली जब आपने प्रॉपर्टी वगैरह दे दी है किसी को तो फिर तो यार आपके पास कुछ है ही नहीं। तो अब आंटी जी ने जाके कर दिया केस, ठीक है, अपने बच्चों पे और ग्रेट ग्रैंडसन पे, और उसके बाद उनको वापस मिल गया सारा कुछ। एंड दिस हैपेंड अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 इंडिया में, कि भाई साहब ये ध्यान नहीं रख रहे, इनको वापस ले लो इनसे। अब वो वापस मिल गई, अब तो मतलब आगे पीछे घूमेंगे वो। बट आई थिंक इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट?
2: I do completely agree with it. For all the old age parents, I tell my mom also, like, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी वाला चीज है। जब तक आप जिंदा हो, अपनी चीजें, अपने assets, अपने सब कुछ अपने नाम पे, अपने पास रखो।
0: बिल्कुल। और बच्चों को घूमने दो तुम्हारे आगे पीछे, अगर पैसों के लिए है तो तब घूमेंगे, ठीक है ना? और अगर पैसों के लिए नहीं है तो ना तब ध्यान रखेंगे, ना बाद में डिजर्व करते हैं, फ्रेंकली।
2: True.

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: और अब बस जाने से पहले हमेशा की तरह, जी हाँ, हम आपका धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपका इतना बढ़िया टेस्ट है कि आपने हमारे साथ 3-3 घंटे तक यहाँ पर बातें करी, यहाँ पर हमें अपने कमेंट्स भी भेजे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका प्यार ही है जो हमें हर हफ्ते खींच लाता है ऐसी खबरों के साथ।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी,
4: आपका प्यार, हमारा भी प्यार इन खबरों की तरफ। हम लोग पूरे हफ्ते भर खबरें ऐसे छांट छांट के निकालते रहते हैं कि ओहो, ये तो वही, ये तो मतलब मजा ही आ जाएगा इसको बात करते हुए।
2: बिल्कुल, अब देखो ना, मैंने बताया आज आपको कि एयर कनाडा का ये आदमी 15-17 सालों से पायलट बना हुआ था। आप लोग भी कभी ना कभी तो बैठे होंगे एयर इंडिया पे, एयर कनाडा पे।
4: Once again, oh God, like, कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ होगा आपके साथ जो ये बार बार।
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अंतरा, हर बार की तरह एक मैं तुमसे रिडल पूछ लूं, प्लीज आज भी पूछ लूं।
4: Oh God, बिल्कुल
2: ठीक है। एक जो नेवी ऑफिसर जो एक बहुत ही छोटी टी शर्ट पहनता हो, उसको हम क्या कहेंगे?
4: नेवी ऑफिसर छोटी, नहीं पता,
2: नेवल ऑफिसर। इसी के साथ में रेणुका यहाँ से जा रही है। I know, जब तक, थैंक गॉड हमारे स्टूडियो में यहाँ पे साउंड प्रूफिंग के लिए सॉफ्टनेस है दीवारों पे, नहीं तो ये तो कितनी बार फोड़ चुकी होती अपना दिमाग।
4: फोड़ तो आई नो।
2: Have a great day ahead, guys. And definitely, मैं तो शाम को मिलूंगी आपको 5 बजे. अंतरा को भी कोशिश करूंगी कि वो भी मिले, लेकिन आने वाला हफ्ता बिल्कुल वीकेंड, एंजॉय इट। अच्छा एक और चीज अंतरा, हम चाहेंगे कि ये एक नया लिसनर हमें इंट्रोड्यूस कराएं, क्या ख्याल है तुम्हारा इस अच्छा? बारे में, है ना?
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ख्याल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
2: एक नया लिसनर इंट्रोड्यूस कीजिए और हमको यहाँ पर लिख भेजिए कि आपने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? और उसके बाद देखिए आपको हम क्या क्या सरप्राइज देते हैं, है ना अंतरा?
4: इंटरेस्टिंग।
2: फिलहाल के लिए तो ये सरप्राइज अंतरा के लिए था क्योंकि मैंने सडनली अनाउंस कर दिया, बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस।
4: मतलब मैं भी उतनी सरप्राइज हूं जितना आप सुनते हुए सरप्राइज्ड हो।
2: ऑलराइट, हैव फन गाइस, हैप्पी फ्राइडे, एंड दिस इज गुडबाय फ्रॉम मस्ती मैडनेस। बाय अंतरा,
4: बाय बाय।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। तुमको लेकर ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में
2: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

एक बात समझ में नहीं आती, अच्छे लोग क्यों मरते हैं, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, रोने वाला क्यों हंसता है, हंसने वाला क्यों रोता है। सह लिया, बहुत सह लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया, अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ

देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे, आंख उठा के देखोगे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे।

एक जज्बा है, जुनून है, एक रुतबा है, फोर्स बगावत है, एक पागलपन है, शहादत है, एक दीवानगी है, फोर्स एक आवाज है, तेरी आवाज, मेरी आवाज, हम सबकी आवाज, ये 120 करोड़ एक साथ मिलकर चिल्लाए तो पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा।

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सोशल।
1: रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
2: दोस्ती,
3: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
2: Desire.
1: और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सलूशन है।
2: Some relationships are tested, some are transformed.
4: ना दुल्हन के लिए मेकअप।
2: Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna starrer Cocktail 2, releasing island-wide on 19th June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
5: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
3: रात अकेली है
1: तो क्या हम तो आप

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh me raho.
3: Raat akeli hai.
0: Raat akeli hai to kya? Hum to aapke

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

मैं क्या काका जी, तुसी इंडिया दी हो।

यहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा।

दो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रात अकेली है
2: तो क्या हम तो आपके

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते हैं।

0: पेट्रोल ते पवाए नहीं।
1: कोई गल नहीं, साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है।
2: रात अकेली है तो क्या हम तो आ

0: love songs.
1: जादू है नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: राहुल, मुझे वो आश्रम में वापस जाना है।
2: मगर पूजा, वहाँ तो सिर्फ खंडर ही खंडर है।
1: नहीं, मैं वहाँ जाऊंगी।

0: नशा है। और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: मोहब्बत क्या है?
3: मोहब्बत, मोहब्बत जिंदगी है।
4: मोहब्बत क्या है, क्यों है, कहाँ है?
3: मेरा विश्वास है कि भगवान ने सारे दिल के रिश्ते पहले से ही जोड़ दिए हैं, बस उनका मिलना हम पे छोड़ दिया है। उसने हम सबको जोड़ियों में बनाया है और हर एक के लिए कोई एक जीवन साथी है।
4: जीवन साथी क्या बकवास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता।
3: मुझे तो पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उससे जरूर मिलूंगी।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे कोई बताएगा प्लीज कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए कौन बनाया गया? मेरा मतलब क्या वो मेरे नाम का बोर्ड लेकर घूम रही होगी?

0: भी कोई चाहता है 105 बच्चे?
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
0: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

I would like to thank Mirchi Awards for giving me this opportunity. हर कंपोजर का एक ड्रीम होता है. मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने देश के साउंड्स को लेके कुछ करूं. और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के म्यूज़िक को एक साथ इकट्ठे बाइंड करके एक स्टेज पे लाऊं. एंड इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस अमेजिंग आर्टिस्ट्स ऑन स्टेज. एंड दिस इज द साउंड ऑफ आवर नेशन. होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट. एंड दिस इज व्हाट मेक्स मी लव माय जिंदगी. सो ऑन दैट नोट, लेट्स गो.

0: A son's first hero and a daughter's first love. Radio Masti 24/7 wishes all the daddies a very happy Father's Day.
1: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।